0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे और संशोधित उड़ान योजना की शुरुआत करेंगे। इसके बाद वे बालोतरा में लगभग 1,06,000 करोड़ रूपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखेंगे। वे चुरू सादुलपुर और चुरू रतनगढ़ रेल लाइन दोहरीकरण परियोजनाओं तथा राष्ट्रीय राजमार्ग 125 ए के 4 लेन वाले हिस्से को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में चयनित लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री गुजरात के सांणंद जाएंगे, जहां वे भारत सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत सीजी सेमी के सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। ये देश की शुरूआती आधुनिक सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण इकाइयों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया की यात्रा पर रहेंगे। उन्होंने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर होगी।
1: प्रधानमंत्री सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर योग्यकार्ता का भी दौरा करेंगे। वे प्रम्बानन मंदिर कॉम्प्लेक्स जाएंगे, जहां भारत इंडोनेशिया के साथ काम करने की योजना बना रहा है। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित है, इसलिए भारत और इंडोनेशिया यहां संरक्षण कार्य पर सहयोग करेंगे।
0: प्रधानमंत्री दूसरे चरण में 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। अंतिम चरण में प्रधानमंत्री 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। गृहमंत्री अमित शाह तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अलनीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की कल समीक्षा बैठक की। श्री शाह ने कृषि मंत्रालय और सभी संबंधित मंत्रालयों को किसानों को उपयुक्त फसलों की बुआई के बारे में परामर्श देने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया। केंद्रीय गृह सचिव और केंद्रीय कृषि तथा किसान कल्याण सचिव सहित विभिन्न

0: मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस साल $1 ट्रिलियन की निर्यात लक्ष्य को हासिल करेगा। पहली तिमाही में ही सालाना निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% पूरा हो चुका है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि इसके लिए वस्तुओं का निर्यात $440 अरब से बढ़ाकर करीब $530 अरब और सेवाओं का निर्यात $421 अरब से बढ़ाकर करीब $470 अरब करना होगा। उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में वस्तुओं के निर्यात में 15% और सेवाओं के निर्यात में लगभग 10-11% की वृद्धि की उम्मीद है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब तक 1,02,000 से ज्यादा गणना प्रपत्र डिजिटाइज किए जा चुके हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय के अनुसार दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत लगभग 33,14,000 फॉर्म बांटे गए हैं। दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर के बीच दर्ज की जा सकती हैं। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को जारी की जाएगी। मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकते हैं। सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि E20 यानी 20% एथेनॉल मिले ईंधन से गाड़ियों का माइलेज कम हो जाता है, जो कि गलत और भ्रामक है। ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून और सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर परीक्षण किए। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला सैयद अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अमेरिका के मियामी गार्डन्स में खेले जा रहे राउंड ऑफ 32 के मैच में अर्जेंटीना और कार्बो वर्डे 3-2 गोल की बराबरी पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी कटक प्रचार करछु आज विशेष वंदना कार्यक्रम।
2: दया करती बोली से दया निधि तांकरी दया रे भंगा चाड़घर परिणत हुए राजप्रसाद रे दुख रूपांतरित हुए सुखरे किए मागे धन किए मागे जन किए मागे शांति किए मागे मुक्ति हेले प्रकृत भक्त जगतपतिंकु मागे हे नीलगिरिनाथ केवल भक्ति रत्नरे मोर अंजलि भरि दियो मोर आउ किछि लोडा नाही सयने सपने जागरणे केवल तुमरी सुंदर रूप मते दृश्य हेउथाउ।

0: लप्स्यते। चेस्टर ले स्ट्रीट इत्यत्र वृष्टिकारणात् पञ्चस्पर्धानां श्रृंखलायाः प्रथमा स्पर्धा निरस्तीकृता आसीत्। तृतीया स्पर्धा जुलाई मासस्य सप्त दिनांके नॉटिंघम इत्यत्र क्रीडिष्यते। ब्रिस्टल साउथहैम्पटन इत्येते नगरे विंशति प्रतिविंशति अन्ताराष्ट्रिय श्रृंखलायाः अन्तिमयोः द्वयोः स्पर्धयोः आतिथ्यं करिष्यतः, यत् जुलाई मासस्य एकादश दिनांके समाप्यते। एतदनन्तरं भारत इंग्लैंड देशौ त्रिस्पर्धानां एकदिवसीयाम् अन्ताराष्ट्रिय श्रृंखलां क्रीडिष्यतः। इति वार्ताः।
1: आकाशवाणी कटक शुणु आज कार्यक्रम सूचना आमर स्वास्थ्य सकाल सतटा दस मिनिट्रे विषय रही वृक्क अक्षमता आलोचक डाक्तर बेकानंद प्रभात परिक्रमा सकाल सतटा पचीस मिनिट्रे ठिक कहतु ठिक लिखतु सकाल सतटा पैंतीस मिनिट्रे विषय रही सन्धि केते आवश्यक ए संपर्क कहे डॉक्टर प्रफुल्ल कुमार त्रिपाठी चिरसबुज सकाल सतटा चालीस मिनिट्रे पल्लिगीत गई शिल्पी अंजलि मिश्र श्रीक्षेत्र माथुरी सकाल आठटा तीस मिनिट्रे शुणीपारे तीन रथ और पार्श्व देवदेवी ए संपर्क कहे डॉक्टर सिद्धेश्वर महापात्र वैदेश विलासर चौस्तरीतम भाग सकाल आठटा पैंचाश मिनिट्रे गीतगतिका सकाल नौटे नाटक परम तृप्तिर हस दिन दशटे रचना सुधाकर नंद प्रयोजना जगदीश अधिकारी दिन दशटा तीस मिनिट्रे शुणीपारे शास्त्रीय संगीत क्रम पंडित जितेन्द्र अभिषेक शास्त्रीय गायन अभला गीत दिन एगारटा दस मिनिट्रे शिल्पी अनन्या साबरी और गीतिस्मिता महापात्र पाला दिन एगारटा तीस मिनिट्रे परेषण करेंगे वनबिहारी ग्रहाचार्य और साथी मंजूल मध्यान्ह दिन बारटे शुणीपारे श्रोता एसएमएस जरिये हिंदी और ओडिया कथचित्र गीत स्वरनिर्चर दिन बारटा तीस मिनिट्रे रही प्रख्यात कंठशिल्पी अतीश कुमार मजुमदार जीवनशैली और कार्यधारा संपर्क सांतला गीत दिन गोटे दस मिनिट्रे परेषण करेंगे भजगोविंद मुर्मू और साथी नारीमल दिन गोटाए कोड़े मिनिट्रे शुणे प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान आलोचिका आशाकर्मी रश्मिता बेहरा दिन दुईटा पैंचाश मिनिट्रे आम आईन आलोचन विषय रही हिंसात्मक कार्य महिला सुरक्षा और आईन आलोचक आईनजीवी रविनारायण शतपथी असरंदी अपराह हिंदी कथचित्र गीत शुणीपारे अपराह्न तीनटा पचीस मिनिट्रे चिरहरित अपराह चारिटे शुणीपारे श्रोता एसएमएस जरिये ओडिया लघु संगीत और ओडिया आलबम गीत समबेत कंठरे देशभक्ति गीत अपराह चारिटा पंचावन मिनिट्रे किशोर चक्र अपराह पांचटे देशराज नंदक कंठरे भजन और देशभक्ति गीत मंदिरमाणिनी ओडिशा आखंडमणि मंदिर संपर्क कहे पूर्णचंद्र सिंह शेष विज्ञान बार्तार रही महाकाश परिप्राजक आलोचना करेंगे आशुतोष मिश्र युवबणी क्यांपस विचित्र शुणीपारे पांचटा तीस मिनिट्रे गोस्वामी तुलसीदास विरचित श्रीराम चरित मानस अड़सठतम भाग संध्या छटा दस मिनिट्रे संबलपुर अंचल गीत संध्या छटा तीस मिनिट्रे परेषण करेंगे नवीन कुमार कुआर ओडिया कथचित्र गीत राति सतटा दुई मिनिट्रे कंधमाल जिला हालचाल राति सतटा पचीस मिनिट्रे बनानी राति सतटा तीस मिनिट्रे एथिरे वन महोत्सव 2026 ए संपर्क में अनिल कुमार राय सहित आलोचना हिंदी कथचित्र राति आठटा दुई मिनिट्रे पारिवारिक धारावाहिक श्रीहरिक संसार यार नवम भाग राति आठटा तीस मिनिट्रे रचना गोपाल छोटराय प्रयोजना प्यारीमोहन महांती अखिल भारतीय हिंदी साहित्य पत्रिका राति नौटा तीस मिनिट्रे अखिल भारतीय संगीत कार्यक्रम राति दसटे रिले कर प्रचार कर आकाशवाणी दिल्ली शुणिले आज कार्यक्रम सूचना आकाशवाणी कटक आम परवर्ती कार्यक्रम आंचलिक संवाद शुणीपारे टिके।

0: ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात में कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। बालोतरा में देश के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर का उद्घाटन करेंगे। गुजरात आतंकरोधी दस्ते ने पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया। केंद्र ने सामान्य से कम वर्षा और अलनीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में संभावित सूखे के हालात की समीक्षा की। मौसम विभाग ने गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। फीफा विश्व कप में म्यामी में हुए रोमांचक मुकाबले में अर्जेंटीना काबो वर्डे को 3-2 से हराकर अंतिम 16 में, मिस्र भी अंतिम 16 में पहुंचा। और मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला इंग्लैंड से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। 480 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना से प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री जोधपुर में उन्नत उड़ान योजना का भी शुभारंभ करेंगे। इसके बाद श्री मोदी बालोतरा जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं पेट्रोकेमिकल्स, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क, नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत पारेषण सहित कई क्षेत्रों में फैली हुई हैं। प्रधानमंत्री बालोतरा के पचपदरा में भारत के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित करेंगे, जो देश के ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है।
2: रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स प्रदेश के पश्चिमी जिलों में निवेश, रोजगार और विकास के नए द्वार खोलेगा। राजस्थान रिफाइनरी परियोजना MSME, पैकेजिंग, टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स व एग्री फिल्म्स जैसे उद्योगों को भी सशक्त करेगी, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण में उत्तर दक्षिण कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, जो शहर में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा। इस चरण से एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर संबंधित परिवहन साधनों एवं मेट्रो सुविधा का एकीकरण किया जाएगा, जिससे नागरिकों को सुगम परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
1: प्रधानमंत्री चूरू शार्दुलपुर और चूरू रतनगढ़ रेल दोहरीकरण परियोजनाओं और राष्ट्रीय राजधानी 125A जोधपुर रिंग रोड खंड 2 भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। श्री मोदी राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में भर्ती किए गए लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगे। प्रधानमंत्री आज शाम गुजरात के लिए रवाना होंगे, जहां वे सानंद में CG सेमी आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। ये उद्घाटन भारत के सेमीकंडक्टर विनिर्माण क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
3: सानंद में शुरू हो रही यह अत्याधुनिक CG सेमी ऑसेट सुविधा भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर निर्माण के मानचित्र पर एक भरोसेमंद केंद्र के रूप में स्थापित करेगी। पूरी क्षमता से शुरू होने के बाद इस संयंत्र से हर साल लगभग 5 अरब सेमीकंडक्टर चिप्स का उत्पादन किया जा सकेगा। यह प्लांट डिजाइनिंग, वेफर सॉर्टिंग से लेकर फाइनल टेस्टिंग तक की पूरी श्रृंखला को एक छत के नीचे उपलब्ध कराएगा। वर्तमान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग के कारण दुनिया भर में बढ़ रही उच्च स्तरीय मेमोरी और स्टोरेज सॉल्यूशंस की जरूरतों को पूरा करने में भी यह प्लांट अहम भूमिका निभाएगा। इसके साथ ही यहां निर्मित होने वाली चिप्स की विशेष रूप से ऑटोमोटिव, दूरसंचार, 5G और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसे अग्रणी क्षेत्रों को आपूर्ति की जाएगी। अपर्णा खूट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: गुजरात में आतंकरोधी दस्ते ATS ने पाकिस्तान स्थित प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन्हें गुजरात और मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से गिरफ्तार किया।

0: किया गया। गुजरात एटीएस ने बताया कि आरोपी पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थे और गुजरात में जैश ए मोहम्मद का नेटवर्क स्थापित करने और आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे थे। वे जैश ए मोहम्मद की विचारधारा का गुजराती में अनुवाद और प्रसार भी कर रहे थे। जांच में पता चला है कि पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन आरोपियों को वित्तीय सहायता भी पहुंचा रहा था। आरोपियों को 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। गृहमंत्री अमित शाह तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अलनीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की कल समीक्षा बैठक की। केंद्रीय गृह सचिव और केंद्रीय कृषि तथा किसान कल्याण सचिव सहित विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।
1: गृहमंत्री ने कहा कि सरकार अलनीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और संभावित सूखे की स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। उन्होंने कृषि मंत्रालय और सभी संबंधित मंत्रालयों को किसानों को उपयुक्त फसलों की बुवाई के बारे में परामर्श देने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया। श्री शाह ने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को देश के सभी जल भंडारों की निगरानी करने तथा विद्युत मंत्रालय के सचिव को बिजली की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई का निर्देश भी दिया। श्री शाह ने कहा कि गृह मंत्रालय के अंतर मंत्रालय केंद्रीय दल को असम और अरुणाचल प्रदेश भेजा जाए ताकि बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन किया जा सके। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से दुर्गा प्रसाद।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस साल $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल कर लेगा। पहली तिमाही में ही सालाना निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% पूरा हो चुका है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि इसके लिए वस्तुओं का निर्यात $440 अरब से बढ़ाकर करीब $530 अरब और सेवाओं का निर्यात $421 अरब से बढ़ाकर करीब $470 अरब करना होगा। उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में वस्तुओं के निर्यात में 15% और सेवाओं के निर्यात में लगभग 10 से 11% की वृद्धि की उम्मीद है। श्री गोयल ने कहा कि भारत ने वित्त वर्ष 2025-26 में $863 अरब का अब तक का सबसे अधिक निर्यात किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और फ्रांस के वित्त मंत्री होला लेस्क्यूर ने कल फ्रांस में भारत फ्रांस आर्थिक और वित्तीय वार्ता की सह अध्यक्षता की। दोनों मंत्रियों ने भारत में आर्थिक विकास के लिए फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी के काम की महत्ता को स्वीकार करते हुए भविष्य की परियोजनाओं की संभावनाओं का स्वागत किया। दोनों मंत्रियों ने भारत और फ्रांस के बीच आर्थिक वित्तीय तकनीकी निवेश और व्यापार से जुड़े मामलों पर बातचीत के लिए इस आर्थिक और वित्तीय वार्ता को मुख्य मंच के तौर पर इस्तेमाल करने का संकल्प लिया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब तक 1,02,000 से ज्यादा गणना प्रपत्र डिजिटाइज किए जा चुके हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय के अनुसार दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत लगभग 33,14,000 फॉर्म बांटे गए हैं। दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर के बीच दर्ज कराए जा सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को जारी की जाएगी। मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार आज मध्य प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री कुमार आज इंदौर पहुंचेंगे, जहां वे लता मंगेशकर सभागृह में आयोजित बूथ लेवल अधिकारियों के सम्मेलन में शामिल होंगे। इस दौरान वे इंदौर, उज्जैन, देवास, धार और खंडवा जिले के 1,500 से अधिक बूथ लेवल अधिकारियों के साथ सीधा संवाद करेंगे। गुजरात राज्य चुनाव आयोग ने विभिन्न स्थानीय स्वशासन निकायों में 15 रिक्त सीटों के लिए आगामी उपचुनावों का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। इन सीटों के लिए मतदान 28 जुलाई और मतगणना 30 जुलाई को होगी। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। वहीं जिला और तालुका पंचायत सीटों के लिए 16 जुलाई तक नाम वापस लिए जा सकते हैं, जबकि नगर निगम और नगर पालिका सीटों के लिए नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 17 जुलाई है। ईरान में पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई का 6 दिवसीय राजकीय अंतिम संस्कार तेहरान में आज से शुरू होगा। अधिकारियों को लाखों शोक संतप्त लोगों के इसमें शामिल होने की उम्मीद है। ईरान के वरिष्ठ नेताओं, सैन्य कमांडरों और विदेशी

0: गणमान्य व्यक्तियों ने तेहरान के मुसल्ला में आयतुल्ला अली खामनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन, संसद अध्यक्ष मोहम्मद बगेर गालिबफ, विदेश मंत्री अब्बास अराकची और रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर अहमद वाहिदी शामिल थे। भारत की ओर से बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश मामलों की राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा अंतिम संस्कार में शामिल हुए। अन्य विदेशी गणमान्य व्यक्तियों में रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव, चीन के वरिष्ठ प्रतिनिधि हे वेई, अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री अमीर खान मुताकी और कई देशों के प्रतिनिधिमंडल शामिल थे। अंतिम संस्कार यात्रा अगले कुछ दिन तक जारी रहेगी और इस महीने की 9 तारीख को पवित्र शहर मशहद में सुपुर्दे खाक किया जाएगा। इसके बाद 40 दिन तक सार्वजनिक शोक मनाया जाएगा। पेरू में केको फुजिमोरी को राष्ट्रपति चुनाव के दूसरे दौर का विजेता घोषित किया गया है। इस महीने के अंत में पदभार ग्रहण करने पर वे पिछले 10 वर्ष में पेरू की 9वीं राष्ट्रपति बनेंगी। पेरू के चुनाव आयोग ने कल औपचारिक रूप से उनकी जीत की पुष्टि की। फुजिमोरी ने 7 जून को दूसरे दौर के चुनाव में रॉबर्टो सांचेस को हराया। सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि 20% एथेनॉल मिले ईंधन से गाड़ियों का माइलेज कम हो जाता है, जो कि गलत और भ्रामक है। ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने बड़े पैमाने पर परीक्षण किए। इन परीक्षणों में गाड़ियों की ईंधन दक्षता पर कोई खास असर नहीं देखा गया। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: फीफा फुटबॉल विश्व कप में अर्जेंटीना ने अमेरिका के मियामी गार्डन्स में खेले गए रोमांचक राउंड ऑफ 32 के मैच में काबो वर्डे को अतिरिक्त समय के बाद 3-2 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। लियोनेल मेसी ने टूर्नामेंट में अपना 7वां गोल करते हुए मैच के 29वें मिनट में अर्जेंटीना को बढ़त दिलाई। मैच का फैसला 111वें मिनट में निर्णायक गोल से हुआ। प्री क्वार्टर फाइनल में अब मंगलवार को अर्जेंटीना का सामना मिस्र से होगा। इससे पहले मिस्र ने ऑस्ट्रेलिया को पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से हरा कर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की की थी। फिलहाल राउंड ऑफ 32 के मैच में कोलंबिया और घाना का मुकाबला अभी जारी है। और अगर बात करें क्रिकेट की तो भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार ये मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। इसके अलावा विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता में नोवाक जोकोविच ने पुरुष सिंगल्स वर्ग में सर्वाधिक मैच जीतने में रोजर फेडरर के रिकॉर्ड की भी बराबरी कर ली है।
0: मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश और उड़ीसा में मूसलाधार और कुछ स्थानों पर आज तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में अगले 2 दिन तक मूसलाधार बारिश की संभावना है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद कनक। रक्षा अधिग्रहण परिषद DAC की बैठक में 52,000 करोड़ रुपए के सौदे स्वीकृत, हिंदुस्तान की सुर्खी है। पत्र लिखता है ड्रोन टैंक मिसाइल की खरीद को दी मंजूरी। लोकसत्ता लिखता है सेना की बढ़ेगी ताकत। हिंदुस्तान, पंजाब केसरी, अमर उजाला, दैनिक ट्रिब्यून सहित अनेक अखबारों ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रतिक्रिया को प्रमुखता से छापा है। लोकसत्ता ने संघ के सह कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले का बयान दिया है, राम भक्तों को पहुंचा आघात, दोषियों को मिले सजा। सरकार द्वारा 7 चीनी ऐप हटाए जाने पर दैनिक भास्कर की हेडलाइन है, अब बीच रास्ते बंद नहीं होंगे ई रिक्शा। अमर उजाला ने लिखा है बैट BMS जैसे ऐप पर सख्ती, ब्लूटूथ से कमजोर पासवर्ड वाली बैटरियों को बंद कर देते थे बदमाश। राजस्थान पत्रिका ने 3 तलाक और हलाला जैसी प्रथाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा 9 आरोपियों की याचिका खारिज करते हुए फटकार लगाने की खबर दी है। हलाला 3 तलाक की आड़ में नहीं दे सकते यौन शोषण की अनुमति। दैनिक भास्कर ने आजकल की भागदौड़ जिंदगी, ऑफिस का तनाव और हर वक्त काम करने की सनक से बर्नआउट हुए लोगों को लाई डाउन की सलाह दी है। घास पर चादर बिछाएं, लेट जाएं और कुछ ना करें, मानसिक थकान दूर, दिल दिमाग रिचार्ज होंगे। देशबंधु ने लिखा है अमरनाथ श्राइन बोर्ड और प्रशासन के सामने खड़ी हुई नई चुनौती, बिना पंजीकरण हजारों की तादाद में पहुंचे श्रद्धालु। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का आकलन जनसत्ता की पहली खबर है। अलनीनो के ताकतवर होने से दुनिया के कई हिस्सों में लू, सूखा और भारी वर्षा का बढ़ेगा खतरा।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात में कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। बालोतरा में देश के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर का उद्घाटन करेंगे। गुजरात आतंकरोधी दस्ते ने पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया। केंद्र ने सामान्य से कम वर्षा और अलिनो के

0: जल्दी टिफिन पैक कर राजू, मोबाइल छाड़े।
1: अरे दीदी, बैंक रो नंबर दरकार, रिफंड आसीनी। मिलीगला, एबे कॉल करू छी दीदी।
0: बिना नंबर जांच करिके प्रायतः जालिया लोके बैंक रो नकली वेबसाइट और मिच्छा नंबर द्वारा टंका ठकई करी थांदी।
1: तो ठीक नंबर
0: बैंक रो ऑफिशियल वेबसाइट किंबा कार्ड रे।
1: तमे तो बंचाई देला दीदी।
0: कामरुनु हे।
2: आरबीआई कहे
3: सठिक आर्थिक आचरण रखे आपन को सुरक्षा रो ध्यान।
4: बंधु, ए वर्षा दिने आहुरी अनेक समस्या देखा दिए। प्रबल वर्षा और पवन जो विद्युत सरबराह बाधाप्राप्त हुए। विद्युत खुंट भांगी किंबा तार छिंडी भली समस्या मध्य सृष्टि हुए। इंटरनेट मोबाइल नेटवर्क मध्य व्याहत हुए। यह जोगु ऑनलाइन काम व्यवसाय और शिक्षा प्रभावित हुए। वर्षा दिने बजार को जीवा भारी कष्टकर हो पड़े। पनीपरिया क्षीर अन्यान्य नित्य व्यवहार्य सामग्री जोगाण कमिजाए, फळरे दाम वृद्धि पाए। गरीब और दिन मजुरी लोकमाने काम न पाए आर्थिक समस्या पड़ती। यह सहित सहर में ड्रेनेज व्यवस्था ठिक नथिले वर्षा पानी जमी रही जलबंदी सृष्टि करे। ग्रामांचल कचा रास्ता कादु हो जाए। केतेक स्थान में नदी में बन्या आसे घरबाड़ी फसल गोरुगाई मानक अनेक क्षति घटाए। लोकमाने भी अनेक असुविधार सम्मुखीन होता।

0: मा तमसा नदी तमे साक्षी मा अग्निशुद्धा पतित पावनी मा जनक नंदिनी जानकींक व्यतीत एही त्रिसंसाररे आउ किए अछि
1: पुत्र हनुमान
0: माते
1: मते तुमे निज मा अंजनाक परि भक्ति करिछ मो निजर पुत्र परि स्नेह करिछ कह हनुमान अयोध्यार प्रजा माने मो उपरे जो कलंक पसर लदिदे अयोध्या रूप विदाय दैछन्ति जे जेते चाहिले भी मो कपाळरु से कलंकर दाग कण केहि लिभै दे पारिबो ना आउ के पारिबनि
0: कांद मा कांद आहुरी कांद तमर अश्रुरे मोर अंजलि पूर्ण हेइ जाउ तमसर स्पर्श जल नुहे महासतींकर लोतकांजलि नेइ मु छुटी जीवी अंजना बन को आउ सेई अश्रु को छिंची देवी चित्रांगदर शरीर रे मु सत्य करी कहुचि मा महासती मैथिलींक लोतक पूर्ण ए अंजलि स्पर्श रे चित्रांगद बंची उठिबो मा आउ समय नहीं मा
1: तमे तमे तमे ए कोन कहुच हनुमान
0: बस मो अंजलि पूर्ण होई जाइछे मा आउ कांदना मते आशीर्वाद कर मा सूर्यास्त पूर्वरु मु अंजना बनरे जे परि पहुंची पारे नचेत सब निष्फल होई जीव प्रभु रघुनाथ अपेक्षा करिछंती ए दृश्य देखी से हसीबे परम तृप्तिर हस जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम
2: देखो राम महासती जानकी जहां हृदय पर पुरुषर छाय भी पड़ी बोली कहिबार कहारी स्पर्धा नाई अन्य पुरुष विषय केवे स्वप्नर भी चिंता करिछन्ति बोली कहिबाकु कहार दुस्साहस नाई सेही महासतींकर चक्षु जल छिंची देवारु चित्रांगद बंची उठुचि
0: सबु प्रभुंक इच्छा
3: ठीक कहिछ हनुमान सबु तांक इच्छा
4: ना गुरुदेव मोर इच्छा रे नुहे नियतिर निर्देश रे समय ही सबु करिछि ओ करुचि
2: हाँ राम मा जगज्जननी सीतांक कपाळरे पिंधाइथिबा कळंकर टीका आजि लिभि जाइछि नियति प्रमाणित करिछि ए विश्वरे मैथिली ही महासती
3: देखन्तु वेदवर ब्रह्मा देख विश्ववासी अवतारी पुरुष रामंक मुखरे स्मित हास्य
2: एया ही तांक मुखरे परम तृप्तिर हस

ଗଙ୍ଗା ମାଧବ ୟୋର ଜୟନ୍ତୀ ଯମୁନା କୂଳେ ରହ କେଳୟ। भगवान कृष्ण विश्वर मंगल करंतु बोलान रे कबार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय राजस्थान के बालोतरा में हैं। उन्होंने बालोतरा में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये परियोजनाएं पेट्रोकेमिकल्स, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क, नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत पारेषण से संबंधित हैं।
1: रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स प्रदेश के पश्चिमी जिलों में निवेश, रोजगार और विकास के नए द्वार खोलेगा। राजस्थान रिफाइनरी परियोजना एमएसएमई, पैकेजिंग, टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स व एग्री फिल्म्स जैसे उद्योगों को भी सशक्त करेगी, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण में उत्तर दक्षिण कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, जो शहर में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा। इस चरण से एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर संबंधित परिवहन साधनों एवं मेट्रो सुविधा का एकीकरण किया जाएगा, जिससे नागरिकों को सुगम परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। 480 करोड़ रुपए की लागत से तैयार ये नया टर्मिनल भवन प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है। श्री मोदी ने संशोधित उड़ान योजना का भी शुभारंभ किया। इससे क्षेत्रीय संपर्क के साथ साथ विमानन क्षेत्र को प्रोत्साहन मिलेगा। देश के नागर विमानन परिदृश्य में इस महत्वपूर्ण विकास से उड़े देश का आम नागरिक पहल को बल मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी शाम में गुजरात के लिए रवाना होंगे, जहां वे सांणंद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान में 23 व्यक्तियों को गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूएपीए के तहत आतंकवादी घोषित किया है। ये लोग जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और

0: और अन्य संगठनों से जुड़े हुए थे। मंत्रालय ने कहा कि देश और नागरिकों की सुरक्षा के लिए सरकार हर आतंकी मॉड्यूल को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। यूएपीए अधिनियम में संशोधन से केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों की शक्तियों का विस्तार करके देश के आतंकवाद रोधी कानूनी ढांचे को मजबूत किया गया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया के अंतर्गत गणना प्रपत्र जमा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी, मतदाता पंजीकरण अधिकारी और बूथ स्तरीय अधिकारी ने उपराष्ट्रपति भवन में चल रही मतदाता सूची के एसआईआर के अंतर्गत गणना प्रक्रिया को सुगम बनाया है। श्री राधाकृष्णन ने सभी पात्र मतदाताओं से इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने का आग्रह किया। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने सोमवार को अपने सदस्यों की बैठक बुलाई है, जिसमें ट्रस्ट को प्राप्त दान की जांच कर रहे विशेष जांच दल एसआईटी के निष्कर्षों सहित कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक और वित्तीय मामलों पर विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक की कार्यसूची में महासचिव चंपत राय और न्यासी डॉ अनिल मिश्रा द्वारा किए गए त्यागपत्रों पर विचार किया जाना शामिल है। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में भारतीय सेना की एक विशेष चिकित्सा टुकड़ी तैनात की है। वेनेजुएला के विदेश मंत्री इवान गिल ने भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया है। उन्होंने आज भूकंप प्रभावित लोगों के इलाज के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत स्थापित भारतीय सैन्य फील्ड अस्पताल का दौरा किया। ये अस्पताल वेनेजुएला के लोगों को 24 घंटे मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता आज से लागू हो गया है। इस समझौते पर पिछले वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए थे। वित्त मंत्रालय ने बताया कि यह समझौता द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और एक सुरक्षित तथा निवेश का अनुमानित वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। फीफा विश्व कप में कोलंबिया ने अमेरिका के कंसास सिटी स्टेडियम में राउंड ऑफ 32 के अंतिम मैच में घाना को 1-0 से हराकर अगले दौर में जगह पक्की की। राउंड ऑफ 16 में अब कोलंबिया का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Prime Minister Narendra Modi inaugurated the new terminal building of Jodhpur Airport in Rajasthan today. The project has been developed at a total cost of 480 crore rupees. Spread over an area of more than 23,000 square meters, the new terminal building is designed to handle up to 20 lakh passengers annually. The new terminal building at Jodhpur Airport will provide a significant boost to tourism, trade and employment generation in the region. Mr. Modi also launched the modified Udaan scheme in Jodhpur. With an allocation of 28,840 crore rupees over the next 10 years, the scheme aims to accelerate the next phase of aviation-led development. The Union Home Ministry has designated 23 individuals based in Pakistan as terrorists under the Unlawful Activities Prevention Act, UAPA. They were linked to Jaish-e-Mohammed, Lashkar-e-Tayyaba and other organizations. These individuals were designated as terrorists for their involvement in various activities, including infiltration, recruitment, supply of arms and planning attacks in Jammu and Kashmir. This will allow agencies such as the National Investigation Agency to block their finances, impose embargoes on arms sales and seize their assets. The government has issued notice to Telegram over widespread piracy reports. According to official sources, the government has directed Telegram to take immediate measures against pirated films and OTT content. Sources further said that the platform has been asked to submit the action taken report within 15 days. The bilateral investment agreement BIA between India and Israel came into force today. The agreement was signed in September last year in New Delhi. The finance ministry said the BIA is a landmark step towards strengthening bilateral economic relations and ensuring a secure and predictable investment climate. The ministry noted that the BIA is expected to contribute to increased cross-border investment activity and further deepen the economic partnership between India and Israel. यूनियन मिनिस्टर

0: साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 मन रखु SBI सचेतन रुहतु सुरक्षित रुहतु।
1: अच्छा दास बाबू आपण घर
2: ଉଣେଇଶହ ସତୁରୀରେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା। ଭଜଗୋବିନ୍ଦ ମୁର୍ମୁ।

0: समझ रहे हैं, लेकिन 21वीं सदी के सबसे बड़े जा संकट पर 21वीं सदी के नए भारत की इच्छा शक्ति और भारत के प्रयास इस संकटों पर भारी पड़े हैं।
1: संध्या प्रधानमंत्री गुजरात गस्त कर अहमदाबाद सानंद सेमी कंडक्टर आसेम्बलींग परीक्षा केन्द्र उद्घाटन करेंगे। 7500 कोटी टंकार अधिक व्यय निर्मित यह प्रकल्प भारत सेमी कंडक्टर निर्माण क्षेत्र को आहरी उन्नत कर अवसर में आयोजन होगा। सभा में केन्द्र सूचना और प्रजुक्ति विद्या मंत्री अश्विनी वैष्णव, गुजरात मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल और उपमुख्यमंत्री हर्ष सांघवी प्रमुख जोगदेव। अहमदाबाद और मुंबई को संयोग करुथबा हाईस्पीड रेल करिडर 2029 सुधा संपूर्ण हेब बोली रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव कहिछन्ति। गुजरात चलिथिबा विभिन्न रेल प्रकल्पर समीक्षा करिबा अवसर में गणमाध्यम सह आलोचना बेले मंत्री श्री वैष्णव कहिछन्ति बुलेट ट्रेन प्रकल्प द्रुतगति आगे चलिछि। गुजरात सेक्शन में 80% कार्य इतिमध्ये संपूर्ण होइसारिछि। हाईस्पीड रेल नेटवर्क पर्यायक्रमे विकसित करायाउछि। सूरत को बिली मुरा सह संयुक्त करुथवा प्रथम प्रकल्प आसंता वर्ष कार्यकारी करिबा नै लक्ष्य धार्य होइछ बोली मंत्री श्री वैष्णव कहिछन्ति।
2: बुलेट ट्रेन का कंस्ट्रक्शन भी बहुत तेजी से चल रहा है और अगले साल सूरत से बिलीमोरा का पहला सेक्शन आरंभ करेंगे, उसके बाद में वापिस से सूरत का सेक्शन आरंभ करेंगे, उसके बाद में वापिस से अहमदाबाद का पूरा कम्प्लीट करेंगे, फिर अहमदाबाद से ठाणे और उसके बाद में अहमदाबाद से मुंबई। इस तरह से सेक्शन बाय सेक्शन फेज बाय फेज 2029 के एंड तक कम्प्लीट करेंगे प्रोजेक्ट। बहुत 80% काम गुजरात के क्षेत्र में कम्प्लीट हो चुका है और बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस।
1: एहि अवसर में मंत्री श्री वैष्णव निर्माणाधीन प्रकल्प नहीं वैषयिक विशेषज्ञ एवं अंशीदार आलोचना करिछन्ति। अहमदाबाद को दिनिकिया गस्त अवसर में मंत्री श्री वैष्णव सहर प्रमुख रेल भित्तिभूमि एवं विकासमूलक पदक्षेपगुड़िकर स्थिति नहीं समीक्षा करिछन्ति। महान दार्शनिक देशप्रेमी तथा सनातन धर्म प्रचारक स्वामी विवेकानंद आज पुण्यतिथि। एहि अवसर में देशव्यापी स्मरणार्थे विभिन्न कार्यक्रम आयोजन करा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी स्वामीजी पुण्यतिथि श्रद्धांजलि अर्पण कर सामाजिक गणमाध्यम पोस्टे श्री राधाकृष्णन कहते भारत सभ्यता चेतना को स्वामी विवेकानंद पुनर्जीवित करने देशर कालजयी ज्ञान को विश्वस्तर में पहुंचाई। स्वामीजी आत्मविश्वास ज्ञान दर्शन एवं करुणा भारत विकास यात्रा को मार्गदर्शन करी से कहते। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बार्तार भारत संस्कृति आध्यात्मिकता और जातीय चेतना को विश्वस्तर में पहुंचाइबार स्वामी विवेकानंद अवदान उपर आलोकपात कर। स्वामीजी आध्यात्मिक शिक्षा और प्रेरणादायक चिंताधारा युववर्ग को मार्गदर्शन और ज्ञान प्रदान कर श्री मोदी समवाय क्षेत्र को अधिक सशक्त करने एवं ए संपर्क में सचेतनता सृष्टि लक्ष्य नहीं आज आंतर्जातिक समवाय दिवस पालन करा जाउछि। प्रतिवर्ष जुलाई मास प्रथम शनिवार एही दिवस पालन करा जायथाय। चलित वर्षर विषयवस्तु रहिछि शांतिपूर्ण विश्व पई समवाय। सांप्रतिक संघर्षमय परिस्थिति रे एक एकीकृत सुदृढ़ एवं शांतिपूर्ण समाज गठन रे समवायर भूमिका उपरे एही प्रसंग प्रतिफलन करुछि। एही दिवस पालन अवसर में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन एवं स्वराष्ट्र समवाय मंत्री अमित शाह शुभेच्छा जणाइछन्ति। सामाजिक गणमाध्यम पोस्टरे उपराष्ट्रपति कहिछन्ति स्वाधीनता पूर्व समयरु समवाय समिति राष्ट्र निर्माण क्षेत्र में गुरुत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करिआसिछि। कृषक महिला एवं क्षुद्र उद्योगी सशक्तिकरण सुदृढ़ संप्रदाय एवं समावेशी अभिवृद्धि में समवाय क्षेत्र एक शक्तिशाली माध्यम होइपारिछि बोली उपराष्ट्रपति कहिछन्ति। समवाय मंत्री श्री शाह कहिछन्ति समवाय क्षेत्र देशर संस्कृति सामूहिक शक्ति एवं आत्मनिर्भरशीलतार मूलदुआ। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्व में समवाय क्षेत्र व्यापक होगा सह अधिक गतिशील होइपारिछि बोली श्री शाह कहिछन्ति। बेआईन कार्यकलाप निवारण आईन यूएपीए अनुयायी पाकिस्तानी 23 जन को आतंकवादी भाव स्वराष्ट्र मंत्रालय घोषणा कर जैश ए महम्मद लश्कर ए तयबा और अन्यान्य आतंकवादी संगठन सह से जड़ित मंत्रालय देशवासी सुरक्षा देवाई प्रत्येक आतंकवादी कार्यकलाप को प्रतिहत करने को सरकार अंगीकारबद्ध मंत्रालय यूएपीए संशोधन मध्यम सरकार और तदंतकारी संस्थागुड़िकर क्षमता अधिक व्यापक होगा सह आतंकवाद विरोधी आईनगत ढांचा मजबूत होइपारिछि। आईन अधीन केन्द्र सरकार कौन संगठन व्यक्तिशेष को आतंकवादी भाव

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बालोतरा में भारत का पहला ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर देश को समर्पित किया। उन्होंने जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया। गृह मंत्रालय ने गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत पाकिस्तान स्थित 23 लोगों को आतंकवादी घोषित किया। सरकार ने बड़े पैमाने पर पायरेसी की रिपोर्ट मिलने के बाद मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट देने को कहा है। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता आज से लागू। दक्षिण पश्चिम मॉनसून अगले 4 दिनों में गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में और आगे बढ़ेगा। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान के बालोतरा में लगभग 1,06,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं पेट्रोकेमिकल्स, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क, नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत पारेषण सहित कई क्षेत्रों से जुड़ी हैं। प्रधानमंत्री ने बालोतरा के पचपदरा में भारत का पहला ग्रीन फील्ड एकीकृत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित किया। ये देश के ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और राजस्थान सरकार का संयुक्त उद्यम है। प्रधानमंत्री ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि ये रिफाइनरी हजारों लोगों के लिए रोजगार का माध्यम बनेगी।
1: आज इस रिफाइनरी को देश को समर्पित किया गया है। ये रिफाइनरी यहां हजारों लोगों के रोजगार का माध्यम बनेगी। मैं राजस्थान के युवाओं को इस रिफाइनरी की विशेष तौर पर बधाई देता हूं। आज का दिन साक्षी है कि बीजेपी सरकारें परियोजनाओं को सिर्फ शिलान्यास करके नहीं छोड़ती है, बल्कि हम उन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भी दिन रात एक कर देते हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की कुल लागत वाली जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण का भी शिलान्यास किया। दूसरे चरण में प्रहलादपुरा से तोड़ी मोड़ तक 41 किलोमीटर लंबा उत्तर दक्षिण मेट्रो कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने चुरू सादुलपुर और चुरू रतनगढ़ रेल दोहरीकरण परियोजनाओं और राष्ट्रीय राजमार्ग 125A

0: जोधपुर रिंग रोड खंड 2 के 4 लेन निर्माण को भी राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड की 1000 मेगावाट बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना भी राष्ट्र को समर्पित की। श्री मोदी ने राजस्थान नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र REZ से बिजली निकासी के लिए 1900 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित पारेषण लाइन का उद्घाटन किया। उन्होंने REZ के लिए 530 किलोमीटर लंबी बिजली पारेषण प्रणाली की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में भर्ती किए गए लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। 480 करोड़ रुपए की लागत से तैयार ये नया टर्मिनल भवन प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है। श्री मोदी ने संशोधित उड़ान योजना का भी शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के नागर विमानन परिदृश्य में इस महत्वपूर्ण योजना से उड़े देश का आम नागरिक पहल को बल मिलेगा।
1: जोधपुर से ही आज उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई है। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है।
0: प्रधानमंत्री आज शाम गुजरात जाएंगे, जहां वे सांणंद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सीजी सेमी के सेमीकंडक्टर प्लांट का दौरा करेंगे और यहां की अत्याधुनिक क्लीन रूम सुविधा का निरीक्षण करेंगे। उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इस खास कार्यक्रम में केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी भी मौजूद रहेंगे। वर्तमान में इस प्लांट में 300 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं और आने वाले 5 सालों में यहां 5,000 से अधिक युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद है, जिससे इस पूरे क्षेत्र के विकास को एक नई रफ्तार मिलेगी। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: गुजरात में विभिन्न रेलवे परियोजनाओं की समीक्षा के बाद अहमदाबाद में संवाददाताओं से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विश्वास जताया कि अहमदाबाद और मुंबई को जोड़ने वाला पूरा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर 2029 के अंत तक तैयार हो जाएगा। उन्होंने बताया कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना का निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है।
3: बुलेट ट्रेन का कंस्ट्रक्शन भी बहुत तेजी से चल रहा है और अगले साल सूरत से बिलीमोरा का पहला सेक्शन आरंभ करेंगे, उसके बाद में वापिस से सूरत का सेक्शन आरंभ करेंगे, उसके बाद में वापिस से अहमदाबाद का पूरा कंप्लीट करेंगे, फिर अहमदाबाद से ठाणे और उसके बाद में अहमदाबाद से मुंबई। इस तरह से सेक्शन बाय सेक्शन, फेज बाय फेज 2029 के एंड तक कंप्लीट करेंगे प्रोजेक्ट। बहुत 80% काम गुजरात के क्षेत्र में कंप्लीट हो चुका है और बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान स्थित 23 व्यक्तियों को गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम UAPA के तहत आतंकवादी घोषित किया है। ये लोग जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और अन्य संगठनों से जुड़े हुए थे। मंत्रालय ने कहा कि देश और नागरिकों की सुरक्षा के लिए सरकार हर आतंकी मॉड्यूल को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। एक रिपोर्ट।
4: गृह मंत्रालय द्वारा आज घोषित किए गए 23 आतंकवादियों में से 17 पाकिस्तान के जबकि 6 भारतीय नागरिक हैं। इस समय ये सभी नामित आतंकवादी पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से अपनी आतंकवादी गतिविधि चला रहे हैं। ये आतंकवादी भारत विरोधी गतिविधियों, हथियारों की तस्करी, सीमा पार घुसपैठ, आतंकवादी संगठनों की मदद, धन जुटाने और आतंकियों की भर्ती जैसी गतिविधियों में शामिल हैं। इन व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित किए जाने के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA इनकी आर्थिक गतिविधियों पर रोक लगा सकेंगी, हथियारों की खरीद बिक्री पर प्रतिबंध और उनकी संपत्तियां जब्त कर सकेंगी। वर्ष 2019 में गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम में संशोधन लागू होने के बाद से केंद्र सरकार अब तक 80 व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित कर चुकी है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: व्यापक पायरेसी की खबरों को देखते हुए सरकार ने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है। सरकार ने टेलीग्राम को पायरेटेड फिल्मों और ओटीटी कंटेंट के

0: खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार प्लेटफॉर्म को 15 दिनों के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट देने को कहा गया है। इस कदम का उद्देश्य भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था, फिल्म उद्योग, प्रसारकों, ओटीटी प्लेटफॉर्म निर्माताओं और वितरकों की रक्षा करना है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि खिलौनों के आयात में भारी गिरावट आई है और घरेलू खिलौना बाजार में देश में ही बने उत्पादों की हिस्सेदारी बढ़ गई है। नई दिल्ली में आयोजित 17वें टॉय बिज इंटरनेशनल B2B एक्सपो को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि भारतीय खिलौना निर्माता राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। इस बीच भारतीय जनता पार्टी की सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि भारत का खिलौना उद्योग जमीनी स्तर पर रचनात्मकता, नवाचार, उद्यमिता और आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को दर्शाते हैं। उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र देश की लोकल से ग्लोबल पहल का एक सशक्त उदाहरण बनकर उभरा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया के अंतर्गत गणना प्रपत्र जमा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने सभी पात्र मतदाताओं से इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने को कहा है। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता BIA आज से लागू हो गया है। इस समझौते पर पिछले वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए थे। वित्त मंत्रालय ने बताया कि यह समझौता द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और सुरक्षित तथा निवेश का अनुमानित वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। मंत्रालय ने बताया कि BIA से सीमा पार निवेश गतिविधियों में वृद्धि होने और भारत तथा इसराइल के बीच आर्थिक साझेदारी और मजबूत होने की उम्मीद है। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में भारतीय सेना की एक विशेष चिकित्सा टुकड़ी तैनात की है। वेनेजुएला के विदेश मंत्री इवान गिल ने भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने आज भूकंप प्रभावित लोगों के इलाज के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत स्थापित भारतीय सैन्य फील्ड अस्पताल का दौरा किया। ये अस्पताल वेनेजुएला के लोगों को 24 घंटे मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरू के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करने पर केकी फुखिमोरी को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत पेरू के साथ अपनी घनिष्ठ मित्रता को बहुत महत्व देता है और विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला सैयद अली खामनेई को तेहरान में सुपुर्दे खाक करने के 6 दिन के राजकीय कार्यक्रम की तैयारियां चल रही हैं। ईरान के वरिष्ठ नेताओं, सैन्य कमांडरों और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों ने तेहरान के ग्रैंड मोसल्ला में अयातुल्ला अली खामनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की। समाचार सेवा प्रभाग विशेष श्रृंखला में प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कार्यरत देवेंद्र सूरा के साथ परिचर्चा प्रस्तुत कर रहा है।
1: चंडीगढ़ शहर अगर सुंदर है तो पेड़ पौधों की वजह से है। तो मेरे मन में आया क्यों ना इस प्लान से हम भारत के हर गांव को हरा भरा बनाएं। मातृ शक्ति ने वहाँ के जो भी सम्मानित या जितने प्रिंसिपल सभी ने भागीदारी दिखाई। अब भाई बेटी के नाम के आगे ऊपर लिखना है माता का नाम। जनता नर्सरी बनाई है उसमें फ्री में पेड़ दिए जाते हैं। ये कार्य तो अभी शुरू हुआ है। अंतिम सांस तक इस अभियान को मतलब एक बड़ी खुशी से और समर्पित भाव से चलता रहेगा।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
0: ये परिचर्चा आज शाम 5:10 पर आकाशवाणी FM गोल्ड 100.1 MHz पर प्रसारित की जाएगी। इसे न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल YouTube चैनल पर भी सुना जा सकता है। इसका पुनः प्रसारण कल सुबह 10:30 भी होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ में कल मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। महाराष्ट्र से हमारी संवाददाता ने बताया है कि कई क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है।
3: मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और सातारा, पुणे व नासिक के घाट इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है।

0: है। सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी और पालघर जिलों की नदियों में जलस्तर बढ़ रहा है और अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। मुंबई शहर और आसपास के इलाकों में आज लगातार पांचवें दिन जोरदार बारिश जारी है। बारिश की वजह से स्कूलों और कॉलेजों में दोपहर की क्लास के लिए छुट्टी घोषित कर दी गई है। नगर निगम ने लोगों से अपील की है कि वे तभी घर से बाहर निकले जब बहुत जरूरी हो। माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं आनंद पाठक।
2: क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच पांच मैचों की T20 श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। श्रृंखला का पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। फीफा विश्व कप में कोलंबिया ने घाना को 1-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। अब अगले दौर में उसका मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। वहीं मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ने अतिरिक्त समय तक चले रोमांचक मुकाबले में कार्बो वर्डे को 3-2 से हराकर अंतिम 16 में जगह बना ली है। अर्जेंटीना के लिए लियोनल मेसी ने टूर्नामेंट का अपना 7वां गोल किया।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बालोतरा में भारत का पहला ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर देश को समर्पित किया। उन्होंने जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया। गृह मंत्रालय ने गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत पाकिस्तान स्थित 23 लोगों को आतंकवादी घोषित किया। सरकार ने बड़े पैमाने पर पायरेसी की रिपोर्ट मिलने के बाद मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट देने को कहा। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता आज से लागू। और भारत इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ଆପଣମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀ କଟକ କେନ୍ଦ୍ରରୁ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ପ୍ରଚାରିତ ହେଉଛି 308.6 meter ତଥା 972 kHz ଯୋଗେ। ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣିପାରିବେ ଏହି ବିଜ୍ଞାପନ ପରେ।
4: ବନ୍ୟା ହେଉ ବା ମହାବାତ୍ୟା सबु परिस्थिति रे
5: गारु सहर जाए सबु स्थान रे
4: आबाल वृद्ध बनिता समस्तंक पाई
5: जुआंग ओ सांतालंक ठारु बंडा एवं कोयांक जाए सबुरी भाषा रे
4: केवल आकाशवाणी।

0: पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज सुनते हैं जम्मू कश्मीर से साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले प्रोफेसर शफी शौक के साथ हमारी खास बातचीत। इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आकाशवाणी समाचार के विशेष संवाददाता तारिक राठौर।
2: आज आकाशवाणी न्यूज के जिन मेहमान शख्सियत के साथ हम बातचीत करेंगे वो हैं एक वन ऑफ द एमिनेंट राइटर्स, ऑथर्स और एक एकेडमिक रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर से। इनका बहुत तकरीबन 35 साल का जो वक्त है उन्होंने कश्मीर यूनिवर्सिटी में एज ए सीनियर एकेडमिक हैंडलिंग डिपार्टमेंट ऑफ कश्मीरी हैंडलिंग डिपार्टमेंट द एक्सपर्टीज इन द इंग्लिश लैंग्वेज एंड ही हैज बीन द एकेडमिक इन इंग्लिश। कश्मीर यूनिवर्सिटी से एज सीनियर मोस्ट टीचर रिटायर होने के बाद इसके साथ साथ वो उनका जो करियर रहा है, उनका जो प्रेजेंस रही है ऑन द लिटरेरी एजुकेशनल लैंडस्केप ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, प्रोफेसर शफी शौक साहब एक बड़ा ऐसा नाम है जिनका नाम सामने आते ही स्टूडेंट्स हैं, एकेडमिक्स हैं, जो रिसर्चर्स हैं, लैंग्वेज जानने वाले लोग हैं, लैंग्वेज के लोग हैं, लिटरेचर से वाबस्ता जो लोग हैं वो बहुत ही अदब और एहतराम के साथ विद ऑल रेस्पेक्ट लव फॉर प्रोफेसर शफी शौक साहब। तो आज हमारे स्टूडियो में हम उनसे बातचीत करेंगे। प्रोफेसर शौक साहब, हम मुख्तसरन हमारे जो लिसनर्स हैं हम आपकी जुबान से ही जानना चाहेंगे कि आप जिंदगी का सफर, एजुकेशन का सफर किस तरह से चला, यहाँ इस लैंडस्केप में आप एक ही बहुत ही आला मकाम पे आ गए, पद्मश्री अवार्डी आप हैं, इसको आप कैसे हमारे सामीन, हमारे लिसनर्स को उन तक पहुँचाना चाहेंगे?
3: मेरी जिंदगी का, मेरे अदबी सफर का और मेरी तालीम का जो सफर है वो किसी खाते मुस्तकीम से नहीं चला, एक लीनियर प्रोग्रेशन से नहीं चला, बल्कि बहुत ही जिगजैग तरीके से करूँ और अपने जो मैंने सोचा था करूं वो नहीं हुआ। पूरी नाकामियों का एक लंबा सिलसिला है, लेकिन वही नाकामियां मेरी कामयाबी बन गई। ये अजीब इत्तेफाक है कि मसलन मैं स्कूल में एग्रीकल्चर पढ़ने गया था घर से बाहर, लेकिन फिर बीएससी बायोलॉजी में किया, बायोलॉजिकल साइंसेस में, लेकिन वहां नाकामी ये हुई कि मेरा अच्छा डिवीजन नहीं रहा, इसलिए मैंने साथ ही एकदम बीएससी करने के बाद अंग्रेजी में एडिशनल सब्जेक्ट्स पास किए वो 3 साल का। फिर जो ही फारिग हुआ बीएससी से तो सीधे कश्मीर यूनिवर्सिटी के शोबे अंग्रेजी में मैंने एडमिशन ले लिया, कोई 1973 की बात है। उससे पहले मैंने हिंदी के कुछ इम्तिहान पास किए हैं, फारसी में कुछ इधर उधर हाथ मारा, यानी कि कहीं एक सिमत में नहीं रहा। अंग्रेजी अदब पर्टिकुलरली मेरा चॉइसेस्ट फील्ड था। मैं साइंस में तालीम हासिल करते वक्त भी अंग्रेजी के बारे में लिखता रहा, अंग्रेजी से ट्रांसलेट करता रहा या कश्मीरी से ट्रांसलेट करता रहा अंग्रेजी में, वो चीजें छपती रही। लेकिन

0: कम से कम प्रेमचंद को तो पढ़ना पड़ेगा, कम से कम कृष्ण चंद्र को पढ़ना पड़ेगा, वरना ऐसा होता है कि आज बहुत सारे लिखना चाहते हैं कि शॉर्ट स्टोरी, लेकिन उनको मालूम ही नहीं शॉर्ट स्टोरी क्या है।
1: प्रोफेसर अशोक साहब, द अमाउंट ऑफ टाइम कैन से द आवर्स मंथ्स लाइफ यू हैव स्पेंट ऑन राइटिंग्स इन एकेडमिक्स, हाउ द पीपल अराउंड यू, योर फैमिली एंड योर फ्रेंड हु आर एसोसिएटेड विद यू, यू वुड लाइक टू गिव क्रेडिट टू एनीबॉडी?
0: Yes, my wife particularly, because she has provided me ample opportunity to be busy with my own work and free from the household jobs. Also, thankful to my children.
1: So, dear listeners, with this, the special program with Padma Shri Professor Shafi Shauk concludes here. Khuda Hafiz.
2: अभी आप सुन रहे थे वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज आपने सुनी जम्मू कश्मीर से साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले प्रोफेसर शफी शौक के साथ हमारी खास बातचीत। इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी समाचार के विशेष संवाददाता तारिक राठौर।
3: पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी।

0: नमस्कार श्रोता बंधु
1: शुभ संध्या
0: स्वागत आपणको आज कैंपस विचित्र कार्यक्रम को
1: आज कार्यक्रम साथी प्रतीक्षा
0: मृत्युंजय
1: अच्छा मृत्युंजय
0: हाँ प्रतीक्षा
1: गोटे कथा पचारिबी
0: तमे आउ केतबेळे कोन न पचारछ कि आ मु मना करले भी तमे रही जेबो कि एटा कहतो
1: ना बिल्कुल नहे
0: त मते पचारछ कोन भई कोह कोन कहिबार अछि
1: अच्छा तमे कॉलेज रे थिला बेळे तमको कोन कोन करबन सब पसंद थिला माने हॉबी कोन थिला
0: हा हा की क्वेश्चन प्रतीक्षा जनसना जंति कि तमे मु होछि पूरा मल्टी टैलेंटेड सुपर टैलेंटेड
1: हा हा हा हा मु जानी छी तमे केते मल्टी टैलेंटेड बोली तथेपि कोन कोन सब करू थिलो
0: अरे कविता आवृत्ति करी सुनौतली संग मान को गीत गायब को बहुत भल लगत बहुत सुंदर भाव रे गीत गाय कहबे जदी सुनाई देबे
1: नाही नाही मृत्युंजय कार्यक्रम को आगो को पढेबर अछि एबे गीत गायबा नाही
0: एक्टिंग एक्टिंग भी करू छली बुझ पाछ अभिनय एकक अभिनय मु बढ़िया करे आ ए सब प्रतिभा जेतु मु पखरे अछि बहुत जण को थार मु आदर पाउथिले मुझे पाउछो
1: ओहो हो हो हो तामने तमे ऑलराउंडर नहीं की
0: बस मुझे जानी थी तमे एमती मोर मजा कुड़े बा तमको मो कथा पर आदम विश्वास आसीबो नी
1: नाही नाही नाही भाई मु विश्वास करू छी तमे ऑलराउंडर बोली नहीं तो मु जदी एबे तमको किछ कहिबी एबे श्रोता बंधु माने मो पर लागिबे
0: आ उठे कथा तमको कहू छी सुन मु लोक मानकर मनर कथा को पढ़ी दी
1: अच्छा एमती भी
0: आ मु एटा भी जानी छी तमे मते आज कॉलेज कथा काहे के पचार छु
1: कहिला देखि ताले
0: आज हेला कैंपस विचित्र कार्यक्रम आ कैंपस विचित्र कार्यक्रम हेले आमे नुआ नुआ कॉलेज को जिबा नुआ नुआ प्रतिभा मानंकु अन्वेषण करिबा आ सेमानकर कविता गल्प टंग ट्विस्टर ए सब जिंस को आमो कार्यक्रम माध्यम रे प्रचार करिबा आ आज मध्य आमे गोटे नुआ कॉलेज को जिबा आ हमर युव बंधु मानंकर प्रतिभा गुडी को हमर कार्यक्रम माध्यम रे श्रोता बंधु मानक पखरे पहुंचेबा ए तो
1: वाह मृत्युंजय वाह माननी गली तमको अच्छा ताले कहिला देखि आज आमे को कॉलेज को जिबा
0: प्रतीक्षा आज कैंपस विचित्रा रो संध्या रे एक नुआ अध्याय रे आमे जिबा शैलबाला महिला स्वयं शासित महाविद्यालय कटक
1: ताहले मृत्युंजय आउ डेरी कहीं की जिबा
0: निश्चित भाबे तबे श्रोता बंधु बिल्कुल डेरी करिबोनी प्रथमे कॉलेज रा अध्यक्ष श्रीयुक्त जीवन बल्लभ जेना महोदय को अनुरोध करिबो निजर वार्ता रखिबे
2: मु श्री जीवन बल्लभ जेना शैलबाला महिला स्वयं शासित महाविद्यालय रा अध्यक्ष आज आकाशवाणी रा ए कार्यक्रम को अत्यंत प्रशंसा करूछि जहां सारा देश को एवं सारा विश्व को विभिन्न प्रकार रा सेवा दे आसुअछि एही महाविद्यालय ओडिशा रो सर्वपुरातन महिला महाविद्यालय एवं भारत रो द्वितीय महिला महाविद्यालय अटे जेउठारे छात्री मान

0: धन्यवाद।
1: प्रतिभा मतलब तो आदम ही इच्छा हो नहीं उठो आगो को जीवा पाई इच्छा हो ची एमते प्रतिभा मानन को कंठ रो गीता सुन थाए कविता सुन थाए गल्प सुन थाए आउ एज रह जीवा को इच्छा है लेनी तो जहां भी हो बहुत सुंदर गीता टी मध्य आपन सुन ले अनेक अनेक धन्यवाद आपन को रजरदार कविता दबा।
0: मृत्युंजय मृत्युंजय ओ मृत्युंजय कुआडे हजी गला जे
1: अरे बाबा नाई नाई नाई नाई बाबा किछो भाबुथिले हो
0: कौन चली छ तम खुरापति दिमाग रे हां
1: मैंने मुझे भावुली कविता सुनिले आम गल्प सुनिले गीत भी सुनिले मोर जो फेवरेट सेगमेंट बा मोते जो पर्सनाली भल लगे
0: ओ टंग ट्विस्टर ना प्रहेलिका
1: दीटा जाक अच्छा कहले गोटे टंग ट्विस्टर कहू आलु बारपल सारू बारपल
0: अरे अरे अरे तमें मत कहीं पचारे आम प्रतिभा मान अच्छा पाखु शुणा
1: गुड आईडिया भल कथे कह प्रतिका डेरी करवानी नहीं टंग ट्विस्टर मुझे कह तमें पचार प्रतिभा मान
0: निश्चित प्रथम टंग ट्विस्टर है आपण मानक पाई पीतल के पतीली में पका।

0: पपीता पीला पीला।
1: पीतल के पतीले में पका पपीता पीला पीला। पीतल के पतीले में पका पपीता पीला पीला। पीतल के पतीले में पका पपीता पीला पीला। पीतल के पतीले में पका पपीता पीला पीला।
0: एबे जीवा परवर्ती टांग ट्विस्टर को ध्यान दे सुनंतु। धाररु धर धारुआ धर धारुआ धर धाररु धर
2: धाररु धर धारुआ धर धारुआ धर धाररु धर धाररु धर धारुआ धर धारुआ धर धाररु धर धाररु धर धारुआ धर धारुआ धर धाररु धर। मु साई प्रज्ञा।
0: तेबे मृत्युंजय टंग ट्विस्टर सरल एबे किछिटा प्रहेलिका पचरिबा आ बुद्धि परीक्षा करिबा हम प्रतिभा मानन करो।
3: निश्चित भाबरे केते चालाक हमर ए शिक्षार्थी माने जणा पडिबे ए प्रहेलिकार पाठ तो सबळ पडचुंदि किंतु किंतु किंतु ई सब जिनसरे केते ध्यान अछि केते मुंड खटै परछंदि सेटा एबे जणा पडिबो। ताहले प्रतिज्ञा हमर प्रथम प्रहेलिका पचाय दियो।
0: निश्चित तेबे आपण मनक पई प्रथम प्रहेलिकाटी हेला मुह माडी सोई थाए बरसकु थरे खाए। आउ थरे कहि रखुछि भल्लो से सुनंतु। मुह माडी सोई थाए बरसकु थरे खाए कण भावुछंति उत्तर हेतिबो आमे देखिबे सेपटु हात उठिछि कण उत्तर
2: चाळघर।
0: अरे वाह ठीक उत्तर। आपणक नाटा कोन कोंतु?
2: नेम राजलक्ष्मी साहू यूजी डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी।
0: परवर्ती प्रहेलिकाटी आपण मानक पई हेला आलो सीता फळ मधुबन पत्तर पिता कण भावुछंति उत्तर टी हेतिबो आमे देखिबा से मझिरु हात उठिछि भौणी को माइकटा दियंतु
4: काकुडी।
0: काकुडी पूरा ठीक उत्तर कहिले आपण।
2: माय नेम इज प्रज्ञाश्री बलवंतराय यूजी फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस।
0: तेबे आमे जीवा परवर्ती प्रहेलिका को जहा हैला सात ताळ पाणी बरसी गला पुओ कना खंडी सुखी रहिला। आपण मनु गोटे हिंट देखि दउछि एटा गोटे गच्छ रिलेटेड अछि की की की कहि परिबो?
4: सारु पत्र।
0: यस सारु पत्र सठिक उत्तर। आपण नाटा टिके कहि दियंतु
4: लग्नजीता पंडा।
0: एथरो गोटे एनिमल रो ना कहिबो। स्वर्ग देश राजकन्या को हस्त देश नेला कांथ देश राजा घरे सुखी सुखी मला। आउ थरे कहि दउछि स्वर्ग देश राजकन्या को हस्त देश नेला कांथ देश राजा घरे सुखी सुखी मला।
4: ठेकुआ।
0: ना ठेकुआ तो नुह।
2: बिल्ली।
0: बिल्ली भी नुह।
4: उंकुणी।
0: उंकुणी अरे वाह ठीक ठीक ठीक। परिचय नहीं जीवा।
4: मोना साई प्रज्ञा।
3: अनेक अनेक धन्यवाद आपण समस्तंको एते सुंदर भावरे आजिर कार्यक्रम रे आपण मानकर प्रतिभा को उपस्थापित कले। निश्चित भावरे हम श्रोता बंधु माने उपभोग करथिबे एवं श्रोता बंधु जदि आजिर कार्यक्रम आपण मानको भलो लागिथाय तबे निश्चित भावरे चिट्ठी एवं मेल माध्यम रे आपण मानकर मतामत जणंतु। हमको चिट्ठी लेखिवार ठिकाना टी होउची युवावाणी विभाग मार्फत केन्द्र निर्देशक आकाशवाणी कटक 753001
0: एवं हमर मेल आईडी टी होउची yv.airctc@gmail.com।
3: तेरे बंधु आज कैंपस विचित्र कार्यक्रम विदाय नहीं रहूछी। मु आपण साथी मृत्युंजय
0: एवं मु प्रतीक्षा
3: रहूछु। नमस्कार।

0: ଶୁଣିଲେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯୁବବାଣୀ।
1: यहाँ खबरें तोड़ी मरोड़ी नहीं जाती।
2: बहुत सारे निजी चैनल और निजी चैनलों के बोलबाला में हम समझ रहे हैं कि आकाशवाणी और दूरदर्शन इसकी रिलेवेंसी क्या है।
1: यहाँ होती है सीधी, सटीक और सच्ची खबरें।
2: मैं मन से मानता हूँ कि भारत के भाव की अभिव्यक्ति केवल और केवल आकाशवाणी और दूरदर्शन ही कर रहा है,
1: क्योंकि ये है देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल। डीडी न्यूज, केवल खबर, पूरी खबर।

0: यहाँ खबरें तोड़ी मरोड़ी नहीं जाती।
1: बहुत सारे निजी चैनल और निजी चैनलों के बोलबाला में हम समझ रहे हैं कि आकाशवाणी और दूरदर्शन इसकी रिलेवेंसी क्या है।
0: यहाँ होती है सीधी सटीक और सच्ची खबरें।
1: मैं मन से मानता हूँ कि भारत के भाव की अभिव्यक्ति केवल और केवल आकाशवाणी और दूरदर्शन ही कर रहा
0: है, क्योंकि ये है देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल। डीडी न्यूज, केवल खबर, पूरी खबर।

0: यहाँ खबरें तोड़ी मरोड़ी नहीं जाती।
1: बहुत सारे निजी चैनल और निजी चैनलों के बोलबाला में हम समझ रहे हैं कि आकाशवाणी और दूरदर्शन इसकी रिलेवेंसी क्या है।
0: यहाँ होती है सीधी, सटीक और सच्ची खबरें।
1: मैं मन से मानता हूँ कि भारत के भाव की अभिव्यक्ति केवल और केवल आकाशवाणी और दूरदर्शन ही करता है,
0: क्योंकि ये है देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल। डीडी न्यूज, केवल खबर, पूरी खबर।

एक बार सभा में बैठे हुए महाबली रावण ने अपने अगणित परिवार को देखा। राक्षसों की संख्या और जातियों को तो गिन ही कौन सकता था। सभी राक्षस माया जानते थे और मनमाना रूप बना सकते थे। वे देवताओं को अपना शत्रु मानते थे। रावण ने सोचा, क्योंकि ऋषिमुनि तथा देवगण ऐसे शत्रु हैं जो सामने आकर युद्ध नहीं करते और शत्रु को देखते ही भाग खड़े होते हैं, अतः उन्हें मारने का एक ही उपाय है और वो है ब्राह्मण भोजन, जिससे उन्हें बल मिलता है, यज्ञ, हवन, तप, श्राद्ध आदि में बाधा डालना। उसने अपने बेटे मेघनाथ को आदेश दिया कि वो रण में धीर और बलवान सिद्ध देवताओं को युद्ध में जीतकर बांध लाए। वो स्वयं भी गदा लेकर निकल पड़ा, जिससे समस्त पृथ्वी डगमगाने लगी। सभी दिक्पाल अपना अपना स्थान छोड़कर भाग निकले। रण के मद में मतवाला रावण अपनी जोड़ी का योद्धा जगत भर में दौड़ता खोजता फिरा, किंतु उसे वैसा योद्धा कहीं नहीं मिला। वो सूर्य, चंद्रमा, वायु, वरुण, कुबेर, अग्नि, काल, यमराज जैसे अधिकारियों तथा किन्नर, सिद्ध, मनुष्य, नाग आदि जीवधारियों के हठपूर्वक पीछे पड़ गया। सृष्टि में जहां तक शरीरधारी स्त्री पुरुष थे, सभी उसके अधीन हो गए। देवता, यक्ष, गंधर्व, मनुष्य, किन्नर और नागों की कन्याओं तथा अन्य सुंदरी स्त्रियों को जीतकर उनसे विवाह कर लिया। कहीं भी शुभ आचरण नहीं होने पाता था। यज्ञ, तप, ज्ञान आदि सभी के मार्ग बंद हो गए। राक्षसों का ऐसा अत्याचार फैला जिसका वर्णन कठिन है। इस प्रकार धर्म के प्रति अतिशय ग्लानि और अनास्था देखकर पृथ्वी अत्यंत भयभीत और व्याकुल हो गई।

0: परियोजनानाम् उद्घाटनं शिलान्यासं च विहितवान्। केन्द्रीय गृहमन्त्रालयेन विधिविरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियमान्तर्गतं पाकिस्ताने स्थिताः 23 जनाः आतंकवादित्वेन उद्घोषिताः। व्यापकरूपेण प्रवृत्तं चलच्चित्रवञ्चनामाधृत्य भारतसर्वकारेण टेलीग्राम संस्थायाः कृते आधिकारिकी सूचना प्रसारिता। भारत इजराइल देशयोः मध्ये संजातः द्विपक्षीय निवेश सन्धिः अद्यारभ्य आधिकारिकरूपेण प्रवृत्तो जातः। भारतर्तु विज्ञान विभागेन विज्ञापितं यत् आगामिषु चतुर्दिवसेषु मध्यभागे गुजरात राज्यस्य कतिपयेषु अन्यभागेषु हरियाणा पंजाब राजस्थान प्रान्तानां शिष्टेषु क्षेत्रेषु प्रावृतस्थितिः सर्वथा अनुकूला वर्तते। अपि च पुरुष क्रिकेट क्रीडायां भारत इंग्लैंड देशयोः मध्ये द्वितीया T20 अन्ताराष्ट्रिय क्रीडा अद्य मैनचेस्टर नगरे क्रीडिष्यते। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य राजस्थाने 1.05 लाख कोटि रूप्यतोप्यधिकानां विकास परियोजनानां उद्घाटनं शिलान्यासं च विहितवान्। अनेन राज्ये आधारभूत संरचनायां ऊर्जायां परिवहने उद्यम सृजने च तीव्रता आयास्यति। स्वस्य यात्रायां प्रधानमन्त्रिणा जोधपुर विमानपत्तने नूतनस्य टर्मिनल भवनस्य उद्घाटनं कृतम्।
1: आज राजस्थान में विकास के कई और भी कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं। आज ही जोधपुर में नए एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है और मैं सोशल मीडिया में देख रहा था कि नए टर्मिनल का आर्किटेक्चर इंटीरियर ये सोशल मीडिया में छाया हुआ है। चारों तरफ राजस्थानी राजस्थान दिख रहा है। साथियों, ये मारवाड़ में पर्यटन व्यापार और रोजगार को नई गति देगा।
0: तदनंतरम सह बालोतरा मंडलस्य पचपदरा क्षेत्रे देशस्य अत्याधुनिकम ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स इत्येतत् राष्ट्राय समर्पितवान्। अत्रांतरे तेन जयपुर मेट्रो द्वितीय चरणस्य शिलान्यासः अपि आभासी माध्यमेन कृतः। अस्मिन् अवसरे जनसभां संबोधयन् प्रधानमन्त्रिणा प्रोक्तं यत् पश्चिम एशिया क्षेत्रस्य संघर्षेण 21वीं शताब्द्याः महत्तमः ऊर्जा संकटः समुत्पन्नः, किन्तु भारतेन समयोचित निर्णयैः कूटनीत्या च एषः कालः सम्मुखीकृतः। पूर्वं भारतं 25-26 देशेभ्यः ऊर्जा आयातं करोति स्म, इदानीं तत् 40 देशेषु विस्तारितम्। सः सबलं प्रावोचत् यत् वैश्विकोत्पाते अपि सर्वकारेण वातिन्धनस्य मूल्यं 2000 रूप्यकाणां स्थाने केवलं 50-900 रूप्यकेषु नियन्त्रितम्। प्रधानमन्त्रिणा प्रोक्तं यत् पश्चिम एशिया युक्रेन संघर्षैः समुत्पन्ने वैश्विक उर्वरक संकटे अपि यूरिया मूल्यं 30000 रूप्यकाणां स्थाने कृषकाणां कृते 300 रूप्यकेषु एव सुरक्षितम्। अनेनैव सह जोधपुरतः आरब्धया उड़ान योजनया लघुनगराणां सुदूर क्षेत्राणां च कृते वैमानिक संपर्कः अधिकः सुदृढः भविष्यति।
1: जोधपुर से ही आज उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई है। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है।
0: राजस्थान सर्वकारस्य विभिन्न विभागेषु च नियुक्तानां 45000 युवकानां कृते नियुक्ति पत्राणि अपि प्रधानमन्त्रिणा वितरितानि। केन्द्रीय गृहमन्त्रालयेन विधिविरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियमान्तर्गतं पाकिस्ताने स्थिताः 23 जनाः आतंकवादित्वेन उद्घोषिताः। एते सर्वे जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा इत्यादिभिः आतंकवादी संगठनैः सह सम्बद्धाः आसन्। मन्त्रालयेन निगदितं यत् देशस्य नागरिकाणां सुरक्षायै सर्वकारः प्रत्येकं आतंकवादी संजालं विनष्टुं कृतसंकल्पः वर्तते। अद्य उद्घोषितेषु 23 आतंकवादिषु 17 पाकिस्तान देशस्य नागरिकाः, 6 च भारतीय नागरिकाः सन्ति। परञ्च साम्प्रतम् इमे पाकिस्तानात् पाकिस्तान अधिकृत जम्मू

0: ଆକାଶବାଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ସବୁବେଳେ
1: କମ୍ପ୍ରିମିୟମ ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RPLI इससे बेहतर कुछ नहीं।
2: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

0: बनानी बनानी। नमस्कार श्रोता बंधु, आपण मानको आजिर बनानी कार्यक्रम को सबुज स्वागत।
1: बनानी बनानी बनानी।
0: अति जतन रे स्नेह र सहित चारा टिए देले रोई हसी बधरणी हसी बबनानी हसुथिबा मे भाई आम चारि पाख लागिब जेमिति सबुज सुंदर भरा आखिरे मनरे केति जे सपन नीति देउथिब धरा। हाँ श्रोता बंधु, रोइले गछ परिवेश आम होइब स्वच्छ। एई स्वच्छता ही पवित्रता। पवित्रता आसिब सेतेबेले जेतेबेले आमे माने पूर्ण मात्रारे निजकु समर्पि देबु गछर सेवारे। गोटिए छोट शिशु को आमे जेमिति स्नेह आदर करुछे ताकु लाळन पालन करि भल मणिषटिए गढ़ि तोळुछे, ठीक सेहिपरि गोटे छोट चारा को भल पाइ बसिबा ताकु मन ध्यान देइ जत्न सहकारे लाळन पालन करि छोट चारारु महाद्रुमरे परिणत करिदेबा। आउ सिए दब आम मानकु जल ठारु जाळेणी जाए सबु किछि देखेइब जीवन आउ जीविकार पथ शिखेइब जीवार नूतन कौशल ता सहित सुख समृद्धि ओ संभावनार नूतन दिगंत आमरी भल पाइबार बंधनरे से बांधी हेइजिब आपे आपे। आउ सबुदिन पई आम सेवा करि चलिब खरा बर्षा शीत काकरकु पादरे आड़े देई आम पई जीवन देइदब। तेणु आसंतु ना आमे भी जीवन देइदब तारि पई। बिल बाड़ी हुड़ा ठारु आरंभ करी अनाबादी आउ पतित जमी स्कूल कॉलेज खाली थिबा स्थान रे रास्ता कड़े बहुल परिमाण रे वृक्षरोपण करी परिवेश को सुस्थ सुंदर ओ निरामय रखिबार संकल्प नेबा एबे ठारु।
1: बनानी बनानी बनानी।
0: हाँ श्रोता बंधु, एबे ठारु काहेकि ना जुलाई एक तारीख ठारु सात तारीख सात दिन जाए ई महोत्सव सप्ताह रे शामिल हे अति कम रे सात दिन रे सातटी गछ रोपण करी ताकु महाद्रुम रे परिणत करिबा पई शपथ नबा। प्राकृतिक पर्यावरण को आखि आगरे रखि जने सचेतन नागरिक हिसाब रे निजकु ए पुण्य काम रे नियोजित करि परिले वन महोत्सव पालन रे यथार्थता ठीक रूपे प्रतिपादित हेई परिबो।
1: बनानी बनानी बनानी।
0: श्रोता बंधु, एही परिप्रेक्षीरे आज बनानी कार्यक्रम रे रही एक विशेष आलोचना। आलोचनार विषय होची बन महोत्सव 2026। ए संपर्क रे आलोचना करिवा पे आम सहित स्टूडियो रे उपस्थित अछंती कटक बनखंडर बनखंड अधिकारी अनिल कुमार राय एवं तांका सहित आलोचना रे अंश ग्रहण करूछंती निहार पाला पटनायक। सर नमस्कार, आपनको स्वागत करुछु हमरा बनानी कार्यक्रम को।
2: नमस्कार।
0: आज आलोचनार विषय रहिछि बन महोत्सव 2026। आमे आलोचना करिबा ताले आपन प्रथमे कहंतु बन महोत्सव कोन, एहाकु महोत्सव रा आख्या कोन पई दिया जाइछि।
2: साधारणत भाबे जेतले बरसात रो आगमन हुए आमे समस्ते जेउठी हमर खाली जगह थाय निजे बाड़ी बगीचा हो अनुष्ठान हो बहु जगह आमे वृक्षारोपण करितौ बा गछ लगे पई आगभर हेतौ।
0: आज्ञा।
2: किंतु 1950 मसिया रु जो महामनीषी थिले हमर ভারত বর্ষর সেতুবে সেমানে জানিলে যে ভবিষ্যতের এইভাবে পিঢ়ি জলবায়ুর গোটে ব্যাপক পরিবর্তন নিশ্চিত রহব এণু এই বৃক্ষরোপণ অভিযান কেমতি গোটে জন আন্দোলনে পরিণত করা। আচ্ছা। সে তৎকালীন যে আমার ভারতবর্ষর কৃষি মন্ত্রী যে লে কে মুন্সি সে জুলাই মাস 1 তারিখর 7 তারিখ সেই প্রথম সপ্তাহটা বন মহোৎসব সপ্তাহ বলে কুযায় সে বৃক্ষ লগাইবা কার্যক্রমটা জন জাগরণের পরিণত করা সে তা আখিরে রক্ষি এইভাবে কার্যক্রম হাতক নিয়ে যাপে আমি প্রতবর্ষ সেই জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহ বন মহোৎসব হিসাবে পালন করে থাকি। অনুষ্ঠান হোক প্রত্যেক নাগরিক হুম সহরাঞ্চল হোক কি গ্রামাঞ্চল সমস্তে ইয়ে কার্যক্রমে সামিল হুম এবং ব্যাপক ভাবে বৃক্ষ লগাইবা সে আপনাই থাকে সে কার্যক্রম আমি বন মহোৎসব কই থাকি। অন্য পর্বপর্বাণী যদি আমি তা পালন করু সেইভাবে।

0: ଶୁଣିଲେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବନାନୀ।
1: यहाँ खबरें तोड़ी मरोड़ी नहीं जाती।
2: बहुत सारे निजी चैनल और निजी चैनलों के बोलबाला में हम समझ रहे हैं कि आकाशवाणी और दूरदर्शन इसकी रिलेवेंसी क्या है।
1: यहाँ होती है सीधी, सटीक और सच्ची खबरें।
2: मैं मन से मानता हूँ कि भारत के भाव की अभिव्यक्ति केवल और केवल आकाशवाणी और दूरदर्शन ही कर रहा,
1: क्योंकि ये है देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल। डीडी न्यूज, केवल खबर, पूरी खबर।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिप विनिर्माण इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए गुजरात के सांसद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट सुविधा का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत ने समय पर लिए गए फैसलों, प्रभावी कूटनीति और राष्ट्रीय संसाधनों के उचित प्रबंधन से पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत ने रिकॉर्ड 38,000 करोड़ रुपए से अधिक की रक्षा सामग्री निर्यात की। महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, नदियां उफान पर। और मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने मेजबान इंग्लैंड को 191 रन का लक्ष्य दे दिया है। वैभव सूर्यवंशी सबसे कम उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए। और विस्तार से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है।

0: गुजरात के सांणद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
1: आज का ये कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कॉमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि सांणद संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी।
1: मुझे बताया गया है कि अभी यहां से हर साल 20 करोड़ चिप्स निकलेगी और मुझे बताया गया आप सभी यही नहीं रुकने वाले हैं, आपने हर साल 500 करोड़ चिप्स का लक्ष्य रखा है, यानी हर दिन 1.5 करोड़ से ज्यादा। मेरा पक्का विश्वास है कि आप उसे बहुत जल्द हासिल करके रहेंगे।
0: श्री मोदी ने कहा कि ये विकास भारत की जबरदस्त इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया। उन्होंने कहा कि सांणद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर संयोजन और जांच केंद्र, घरेलू चिप निर्माण व्यवस्था मजबूत होने के साथ तकनीकी आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा देगा और वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला में भारत की स्थिति में इससे सुधार होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।
1: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
0: इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस वर्ष के अंत तक भारत में 5 सेमीकंडक्टर संयंत्र चालू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि सांणद संयंत्र केवल 27 महीने में पूरा हो गया।
2: आज भारत का तीसरा सेमीकंडक्टर प्लांट चालू हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 28 फरवरी को पहला प्लांट चालू किया और 31 मार्च को दूसरा प्लांट चालू किया और आज 4 जुलाई को तीसरा प्लांट। जिस तेजी से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में 12 प्लांट अप्रूव किए और 12 प्लांट में से 3 में कॉमर्शियल प्रोडक्शन चालू हुआ, आज दुनिया भर में भारत की सेमीकंडक्टर क्षमता पर एक नया विश्वास उठ खड़ा हुआ है।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि संयंत्र में निर्मित चिप का उपयोग कारों, स्कूटरों और कई तरह के औद्योगिक कार्यों में किया जाएगा। ये चिप जापान, अमरीका और यूरोप भेजी जाएंगी और इससे भारतीय प्रौद्योगिकी को दुनिया भर में पहचान मिलेगी। इससे पहले राजस्थान के पचपदरा में प्रधानमंत्री ने 1,05,000 करोड़ रूपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने जयपुर मेट्रो के चरण 2 की आधारशिला भी रखी। उन्होंने पचपदरा में देश के सबसे आधुनिक ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर को राष्ट्र को समर्पित किया। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी तेल, गैस या खनिजों के लिए एक औद्योगिक प्रसंस्करण संयंत्र है। इसे अविकसित स्वच्छ भूमि पर बिल्कुल नए सिरे से बनाया जाता है। श्री मोदी ने कहा कि पचपदरा रिफाइनरी भारत को एक विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक परियोजना है।
1: ये रिफाइनरी यहाँ हजारों लोगों के रोजगार का माध्यम बनेगी। मैं राजस्थान के युवाओं को इस रिफाइनरी की विशेष तौर पर बधाई देता हूँ। आज का दिन साक्षी है कि बीजेपी सरकारें परियोजनाओं को सिर्फ शिलान्यास करके नहीं छोड़ती है, बल्कि हम उन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भी दिन रात एक कर देते हैं।
0: श्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में लगभग 54,000 नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दिए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बताया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये सत्र राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णयों पर केंद्रित होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश का रक्षा निर्यात 38,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। नई दिल्ली में कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने ये जानकारी दी।
1: आज हमारा डिफेंस प्रोडक्शन मोर देन 1,78,000 करोड़ पहुंच चुका है। 7-8 साल 9 साल पहले तक हमारा ये डिफेंस प्रोडक्शन अप्रॉक्सिमेटली 46,000 करोड़ था। डिफेंस एक्सपोर्ट भी रिकॉर्ड 38,000 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच गया है। और मैं आपको बताना चाहूंगा 2013 और 14 में यह केवल 686 करोड़ था, जो आज यह बढ़कर 57 टाइम्स बढ़ चुका है।
0: नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा है कि संशोधित उड़ान योजना का शुभारंभ भारत की क्षेत्रीय कनेक्टिविटी यात्रा के अगले अध्याय का परिचायक है। श्री नायडू ने कहा कि 28,840 करोड़ रुपए से अधिक के बजट आवंटन के साथ प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू की गई ये योजना टियर 2 और टियर 3 शहरों में कनेक्टिविटी को और मजबूत बनाएगी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने मादक पदार्थों की मांग में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य रोकथाम, जागरूकता पैदा करना, क्षमता निर्माण, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ वीरेंद्र कुमार ने कहा कि इन पहलों का उद्देश्य जागरूकता, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण के जरिए मादक पदार्थों के दुरुपयोग को रोकना है। ऑटोमोबाइल उद्योग के विशेषज्ञों ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को एक सुनियोजित, चरणबद्ध और वैज्ञानिक रूप से संचालित प्रक्रिया के जरिए लागू किया गया है। नई दिल्ली में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की प्रबंध निदेशक वर्तिका शुक्ला ने कहा कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम 2018 में संरचित चर्चा और हितधारकों के परामर्श के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में रखा गया था। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स के प्रमुख और कार्यकारी उपाध्यक्ष विक्रम गुलाटी ने कहा कि एथेनॉल एक स्वच्छ ईंधन है, ये अच्छी परिचालन क्षमता और तेज गति प्रदान करता है। सरकार ने व्यापक पायरेसी की खबरों के बीच मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है। सरकार ने टेलीग्राम को पायरेटेड फिल्मों और ओटीटी कंटेंट के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। टेलीग्राम को 15 दिन के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट देने को कहा गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में लगातार मूसलाधार बारिश से सामान्य जनजीवन प्रभावित है। प्रशासन हाई अलर्ट पर है। वर्षा के कारण मुंबई, ठाणे, रायगढ़ और पालघर, गोंदिया, भंडारा, धुले, नासिक और पुणे के कई हिस्से प्रभावित हुए हैं। मुंबई, ठाणे और पालघर में स्कूल बंद करने पड़े। पालघर जिले में बाढ़ जैसे हालात हैं। रायगढ़ में सावित्री, कुंडलिका और उल्लास नदियां उफान पर हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए मुंबई, ठाणे, पालघर और पुणे तथा सतारा के लिए वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमरीका की स्वतंत्रता की 250वीं वर्षगांठ पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अमरीका के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने कहा है कि दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी, लोकतंत्र, सुशासन और लोगों की असीम क्षमता में साझा विश्वास पर आधारित है। प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। वैश्विक शांति अभियानों में भारत के दीर्घकालिक योगदान को एक महत्वपूर्ण मान्यता मिली है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में कल संयुक्त राष्ट्र के अधीन सेवारत

0: 651 भारतीय सेना के कर्मियों को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया। संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के अंतर्गत भारतीय दल की व्यावसायिकता, परिचालन उत्कृष्टता और समर्पित सेवा को सम्मानित किया गया। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई के 6 दिन का राष्ट्रव्यापी अंतिम संस्कार आज सुबह तेहरान में शुरू हुआ। ईरान के दिवंगत नेता को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हजारों शोक संतप्त लोग एकत्रित हुए थे। हवाई हमले में मारे गए परिवार के सदस्यों के साथ रखे गए खामेनेई के ताबूत को देखकर शोक संतप्त लोगों ने प्रार्थना की। ईरान के वरिष्ठ नेता, सैन्य कमांडर और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों ने खामेनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। मैनचेस्टर में भारत ने इंग्लैंड को दूसरे T20 क्रिकेट मैच में 191 रन का लक्ष्य दे दिया है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 190 रन बनाए। ईशान किशन ने सर्वाधिक 49 और अभिषेक शर्मा ने 43 रन बनाए। भारतीय टीम में संजू सैमसन की जगह वैभव सूर्यवंशी को शामिल किया गया है। वैभव 15 वर्ष 99 दिन की उम्र में भारत के डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। 5 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 के पहले मैच में आज रात 10:30 कनाडा का सामना मोरक्को से होगा। एक अन्य मुकाबले में तड़के 2:30 पैराग्वे का मुकाबला फ्रांस से होगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने देश में लीवर की महामारी और टाइप 2 मधुमेह से निपटने के लिए राष्ट्रीय मिशन को शुरू करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में डॉक्टर सिंह ने कहा कि ये रोग अब पहले की तुलना में कम उम्र के लोगों में भी देखे जा रहे हैं। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिप विनिर्माण इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए गुजरात के सांद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमी कंडक्टर असेंबली और टेस्ट सुविधा का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत ने समय पर लिए गए फैसलों, प्रभावी कूटनीति और राष्ट्रीय संसाधनों के उचित प्रबंधन से पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत ने रिकॉर्ड 38,000 करोड़ रुपए से अधिक की रक्षा सामग्री निर्यात की। और मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने मेजबान इंग्लैंड को 191 रन का लक्ष्य दे दिया है। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani and I am Naresh Mago with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi inaugurates CG semi-outsourced semiconductor assembly and test facility in Sanand, Gujarat to strengthen chip manufacturing ecosystem. Prime Minister Modi says, India successfully overcame West Asia crisis through timely decisions, effective diplomacy and prudent management of national resources. Monsoon session of Parliament to be held from 20th of this month to 13th August. India's defence exports reach a record high of over 38,000 crore rupees, says Defence Minister Rajnath Singh. Heavy rain disrupts normal life in many parts of Maharashtra, several rivers in spate. And in men's cricket, India set a target of 191 runs for hosts England in second T20 in Manchester. Vaibhav Suryavanshi becomes youngest debutant in international cricket. Prime Minister Narendra Modi today inaugurated CG Semi's state-of-the-art outsourced semiconductor assembly and test OSAT plant in Sanand, Gujarat. The event was attended by Union Minister Ashwini Vaishnaw and Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel along with global tech leaders. Developed with a massive investment of over 7,500

0: ये आकाशवाणी दिल्ली है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी की अखिल भारतीय साहित्यिक पत्रिका साहित्य भारती में आपका स्वागत है।
0: नमस्कार, सावन अगर हकीकत है तो आषाढ़ एक कल्पना, ऐसी कल्पना जिसमें भरे होते हैं खुशी के रंग, झीनी बहार, गर्म हवाओं के बीच हल्की सी फुहरन, जैसे तस्वीर खिंचवाने के बाद उसे देखने की त्वरित ललक होती है, या कपड़े सिल्क
2: की, ठीक वैसे ही आषाढ़ में धरती खुद को आकाश के आईने में निहारने को आतुर रहती है, खूब सजना संवरना चाहती है, बादलों और हवाओं को हरी ओढ़नी सिलने को दे आती है, खूब बतलाना और जतलाना चाहती है, सिद्ध करना चाहती है अपने होने और जग की सार्थकता को। आकाश और धरा के बीच जो रिक्त है, जो दूरी है, उसे पास लाती है, उसे मिलाती है, उसे बुलाती है ये बरखा। सही मायने में ये बरखा ही सार है, आधार है इस संसार सागर का, जीव जगत के अस्तित्व का। बरखा है तो ये कहानी है, बरखा है तो ये रवानी है, कोई इसमें बहुत ज्यादा डूब जाता है तो कोई सारा का सारा प्यासा रह जाता है। बरखा खुले में मैदानों में होती है, मगर घर की बहुत सी खिड़कियों से प्यास झांकती रह जाती है। बशीर बद्र का एक शेर साया सी याद आ रहा है, जिस बादल की आस में जूड़े खोल दिए सुहागन ने, वो पर्वत से सिर टकराकर बरस गया सहराओं में। सुनते हैं रूपक, मेघ, मन और मालवा।
3: प्रकृति की लय में आषाढ़ का एक दिन। महाकवि कालिदास ने अपने महाकाव्य मेघदूत में लिखा

0: आषाढस्य प्रथम दिवसे मेघमाचलिष्ट शानु वक्र क्रीड़ा परिणत गज प्रेक्षणीयम ददर्श, यानी आषाढ़ के पहले दिन जब यक्ष ने पर्वत के शिखर पर झुके हुए मेघ को देखा तो उसे ऐसा लगा कि एक हाथी क्रीड़ा में मगन हो टीले से मिट्टी खोद रहा है। तो यक्ष अपनी पत्नी यक्षिणी की स्मृति में व्याकुल हो उठता है और मेघ को ही अपना संदेश वाहक बनाने का निश्चय करता है। कालिदास की ही रचना मेघदूत से प्रेरित होकर मोहन राकेश ने आषाढ़ का एक दिन नामक नाटक लिखा। ये कालजयी कृति आधुनिक हिंदी नाटक की आधारशिला मानी जाती है। आषाढ़ का पहला दिन भारतीय काव्य परंपरा में केवल ऋतु परिवर्तन का संकेत नहीं है, वे मनुष्य के भीतर घटित होने वाले भाव परिवर्तन का भी समय है। उमड़ते मेघ, आकाश में फैलती घटाएं और वर्षा की पहली आहट भारतीय साहित्य में सदियों से प्रेम, प्रतीक्षा, स्मृति और विरह के प्रतीक रहे हैं। कालिदास ने मेघदूत में मेघ को संदेश वाहक बनाया था, ऐसा दूत जो दूरियों को जोड़ता है और स्मृतियों को जीवित रखता है। आधुनिक हिंदी साहित्य में यही प्रकृति बोध एक नए रूप में मोहन राकेश के नाटक आषाढ़ का एक दिन में दिखाई देता है। इस नाटक में प्रेम, विरह, सृजन और जीवन दृष्टि का संवाद है। प्रकृति है जो पात्रों की मन स्थितियों के साथ चलती है और मालवा का परिवेश है जो पूरे नाटक को संवेदनात्मक धरातल देता है। भारतीय साहित्य में आषाढ़ का महीना विशेष महत्व रखता है। ये केवल वर्षा का आरंभ नहीं बल्कि प्रतीक्षा, स्मृति, प्रेम और विरह का काल भी है। संस्कृत से लेकर हिंदी तक की काव्य परंपरा में आषाढ़ और मेघ मनुष्य की भावनाओं के वाहक रहे हैं। नाटक की शुरुआत ही आषाढ़ का पहला दिन और मूसलाधार वर्षा के साथ होती है। भारी वर्षा में मल्लिका कालिदास के साथ वर्षा विहार कर गीले वस्त्रों में कांपती सिमटती हुई लौटती है और अपनी माँ से कहती है,
1: आषाढ़ का पहला दिन और ऐसी वर्षा माँ, ऐसी धारासार वर्षा, दूर दूर तक की उपत्यकाएं भीग गईं और मैं भी तो देखो ना माँ कैसी भीग गई हूँ।
0: मल्लिका को भीगने का तनिक भी दुख नहीं होता। वो कहती है, अगर मैं नहीं भीगती तो इस सुख से वंचित रह जाती। वो उस सौंदर्य का वर्णन करती है जो उसकी स्मृति में स्थायी रह जाता है और यहाँ प्रकृति उसके मन की अनुभूति बन जाती है। मल्लिका कहती है,
1: मैं जीवन में पहली बार समझ पाई कि क्यों कोई पर्वत शिखरों को सहलाती मेघ मालाओं में खो जाता है, क्यों किसी को अपने तन मन की अपेक्षा आकाश में बनते मिटते चित्रों का इतना मोह रहता है।
0: मल्लिका केवल कालिदास से प्रेम ही नहीं करती, वह उनके भीतर के कवि को भी पहचानती है। इसीलिए जब उज्जैनी से कालिदास को राजकवि बनने का निमंत्रण मिलता है तो एक बड़ा द्वंद्व सामने आता है। कालिदास का मन तैयार नहीं होता, उन्हें लगता है कि इस गांव, इन पर्वतों, इन मेघों और मल्लिका से दूर होकर कहीं उनका रचनात्मक स्रोत सूख ना जाए। मालवा की प्रकृति, आत्मीय परिवेश और मल्लिका, यही तो कालिदास की रचनात्मकता का आधार हैं। लेकिन मल्लिका अपने प्रेम को बंधन नहीं बनने देती, वह अपने व्यक्तिगत सुख से अधिक कालिदास की रचनात्मक यात्रा को महत्व देती है। वह उन्हें समझाती है कि उन्हें उज्जैनी अवश्य जाना चाहिए। जब कालिदास कहते हैं,
2: फिर एक बार सोचो मल्लिका, प्रश्न सम्मान और राजाश्रय स्वीकार करने का ही नहीं है, उससे कहीं बड़ा प्रश्न मेरे सामने है।
1: और वो प्रश्न मैं हूँ ना?
2: तुम पूरी तरह नहीं समझ रही हो मल्लिका, प्रश्न

0: तुम्हारे घेरने का नहीं है। मैं अनुभव करता हूँ ये ग्राम प्रांत मेरी वास्तविक भूमि है। मैं कई सूत्रों से इस भूमि से जुड़ा हूँ। उन सूत्रों में तुम हो, ये आकाश और ये मेघ है। यहाँ की हरियाली है, हरिणों के बच्चे हैं, पशुपाल हैं। यहाँ से जाकर मैं अपनी भूमि से उखड़ जाऊंगा।
1: विश्वास करो, तुम यहाँ से जाकर भी यहाँ से अलग नहीं होगे। यहाँ की वायु, यहाँ के मेघ और यहाँ के हरिन सब तुम्हारे साथ जाएंगे और मैं भी तुमसे दूर नहीं होंगी। जब कभी तुम्हारे निकट होना चाहूंगी, पर्वत शिखर पर चली जाऊंगी और उड़ते हुए मेघों से घिर जाया करूंगी।
2: कालिदास उज्जैनी पहुंचते हैं, वहां उन्हें यश मिलता है, प्रतिष्ठा मिलती है, वैभव प्राप्त होता है, उनका व्यक्तित्व विस्तार पाता है और उनकी पहचान दूर दूर तक स्थापित होती है। लेकिन इसी यात्रा के साथ एक दूसरा परिवर्तन भी घटित होने लगता है। वे धीरे धीरे उस भाव भूमि से दूर होते जाते हैं जहां उनकी सृजनात्मक चेतना ने जन्म लिया था। जिस प्रकृति ने उन्हें संवेदना दी, जिन आत्मीय संबंधों ने उनकी कल्पना को आकार दिया और जिस सहज परिवेश ने उनके भीतर के कवि को जन्म दिया था, वही संसार अब उनसे छूटने लगता है। नाटक का अंतिम भाग इसी गहरी विडंबना को उजागर करता है कि मनुष्य जीवन में उपलब्धियां तो अर्जित कर लेता है, पर कई बार उसी प्रक्रिया में वह उन स्रोतों से दूर हो जाता है जिन्होंने उसके व्यक्तित्व को निर्मित किया था। उल्लेखनीय है कि नाटक की शुरुआत भी आषाढ़ की वर्षा से होती है और अंत भी वर्षा के ही वातावरण में घटित होता है। किंतु जहां आरंभ की वर्षा में उल्लास, प्रेम और संभावनाएं हैं, वहीं अंत की वर्षा में समय, दूरी और जीवन की अनकही रिक्तता का बोध है। इसीलिए आषाढ़ का एक दिन केवल कालिदास की कथा नहीं है। यह नाटक हमें बताता है कि हर बड़ी उपलब्धि के पीछे कुछ ऐसी स्मृतियां और संबंध भी छूट जाते हैं जिनका मूल्य समय बीतने पर अधिक गहराई से समझ में आता है।
3: वही आषाढ़ का दिन है, उसी तरह मेघ गरज रहे हैं, वैसे ही वर्षा हो रही है, वही मैं हूँ, उसी घर में हूँ, किंतु
0: लोग सोचते हैं मैंने उस जीवन और वातावरण में रहकर बहुत कुछ लिखा है, परंतु मैं जानता हूँ कि मैंने वहाँ रहकर कुछ नहीं लिखा। जो कुछ लिखा है वो यहाँ के जीवन का ही संचय था। कुमार संभव की पृष्ठभूमि ये हिमालय है और तपस्विनी उमा तुम हो मलिका। मेघदूत के यक्ष की पीड़ा मेरी पीड़ा है और विरह विमर्दता यक्षिणी तुम हो।
4: मेघ, मन और मालवा, अभी आपने ये रूपक सुना। आलेख और वाचन सुश्री भावना झा का था और नाट्य स्वर था नेत्रा और प्रांजल का। साथियों, कहते हैं इंसान कुछ नहीं करता, समय प्रावर्तिक रहकर उसे उस ओर आकर्षित करता है। मोहन राकेश की कृति आषाढ़ का एक दिन विवेक, आत्मबोध और अनुभव जैसे बिंदुओं पर मौन रहकर भी बहुत कुछ कह जाती है, चिंतन के नए द्वार खोल जाती है और यथार्थ कुछ कुछ तत्कालीन समाज को आगाह करता है। लेकिन एक सीढ़ी नीचे उतरा जाए तो वहाँ एक ऐसी पीढ़ी दिखाई देती है जो जड़ता, बंधन, दमन और शोषण में लिपटी हुई है। निराशा के बीच वहाँ कोई उम्मीद भी नहीं। साहित्य के हर अनुयायी ने किसी न किसी मोड़ पर प्रेमचंद को अवश्य पढ़ा है। सब कुछ न सही, पर बहुत कुछ जरूर पढ़ा है। कुछ ऐसा भी है जो नहीं पढ़ा होगा। आइए ऐसी ही कुछ रचनाओं पर चर्चा करते हैं वरिष्ठ

0: चारणकर्मी लेखक और आलोचक श्री राजीव कुमार शुक्ल से। आपसे बातचीत कर रही हैं युवा लेखिका नवोदिता मिश्रा।
1: 31 जुलाई को महान कथाकार साहित्यकार प्रेमचंद की जयंती है और प्रेमचंद जैसे बड़े और प्रसिद्ध लेखक की कुछ रचनाएं जो कालजयी हो गई, मगर ऐसी भी बहुत सी रचनाएं हैं जिनका जिक्र कम होता है या जिनको एक आम पाठक द्वारा या कुछ खास पाठकों द्वारा भी कम पढ़ा गया है। हालांकि वो बहुत अच्छी रचनाएं हैं अपने कथ्य में, अपने प्रभाव में। प्रेमचंद कुछ अनपढ़े कुछ अनसुने, इस विषय के इर्द गिर्द आज हम बात करने का प्रयास करेंगे। तो पहला सवाल वो ये है कि कुछ रचनाएं जो इतनी लोकप्रिय हो गई कि उनकी पहचान ही बन गई, तो क्या इसी लोकप्रियता ने उनकी अन्य उत्कृष्ट रचनाओं को पाठकों की दृष्टि से ओझल कर दिया?
2: देखिए, ओझल कर दिया शायद ज्यादा बड़ा एक बयान होगा, और वैसे एक हद तक तो ये देखिए होता ही है कि किसी भी रचनाकार ने अगर प्रचुर मात्रा में लिखा है तो उस प्रचुर मात्रा में लिखी गई रचनाओं में से कुछ रचनाएं अधिक चर्चित होती हैं, किसी समय विशेष में ज्यादा चर्चित होती हैं। समय बदलता है, युग के मानदंड और मान्यताएं बदलती हैं, आवश्यकताएं बदलती हैं, मनुष्य के सरोकार बदलते हैं, तो उसके साथ साथ कई कहानियां, कई रचनाएं, कई कविताएं, कई उपन्यास फिर से वो महत्वपूर्ण हो जाते हैं, फिर से प्रकट हो जाते हैं। ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अगर आपकी साहित्य में रुचि है और आपको साहित्य पढ़ने में सुख मिलता है और उससे आप कुछ समृद्ध होते हैं, तो हर साहित्यकार की और खासतौर से खूब लिखने वाले साहित्यकारों की जो बहुत चर्चित रचनाएं हैं, उनके अलावा भी कई रचनाएं होती हैं जिनको पढ़ने से आप समृद्ध होते हैं और उनकी रचना धर्मिता के बहुत सारे ऐसे पहलू आपके सामने आते हैं जो कुछ रचनाओं विशेष पर अगर आप केंद्रित बने रहें तो उसमें प्रकट नहीं होते हैं।
1: वो रचनाएं भी बहुत इजाफा करती हैं। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि प्रेमचंद की ऐसी कौन सी रचनाएं हैं जिनका साहित्यिक मूल्य आपकी दृष्टि में बहुत ऊंचा है लेकिन कम पढ़ी गई या कम चर्चित है या बिल्कुल ही अनदेखी रह गई?
2: देखिए, बिल्कुल अनदेखी रह गई वाली बात तो थोड़ी कठिन होगी, क्योंकि प्रेमचंद का जैसे मानसरोवर है जिसमें उनकी कहानियां संग्रहित हैं, वो बहुत सारी कहानियां हैं। उन सारी कहानियों की चर्चा तो शायद एक बातचीत में एक आदमी के द्वारा करना लगभग असंभव ही होगा। एक संयोग है, मेरी स्कूली शिक्षा उत्तर प्रदेश में हुई और ये दौर था, ये 1960 के दशक का अंत था और उस समय उत्तर प्रदेश के विद्यालयों में हिंदी के विद्यार्थियों के लिए एक पुस्तिका हुआ करती थी जिसमें प्रेमचंद की ऐसी कहानियां थीं जिनको बाल मनोविज्ञान के साथ जोड़ करके ज्यादा बच्चों के लिए इनको अनुकूल माना जाता था, और प्रेमचंद की कई कहानियां एक साथ पढ़ने का जो सौभाग्य था वो उससे शुरू हुआ। उसमें जहां तक मुझे याद है कि कफन शायद नहीं थी, सबसे चर्चित कहानियों में कफन है, पूस की रात है, लेकिन कई कहानियां थी जो बहुत चर्चित हैं और सब जानते हैं, ईदगाह जैसे महान कहानी है और ईदगाह उसमें थी। हाँ, एक कहानी और जो बहुत लोकप्रिय भी है और मुझे बहुत प्रिय है, बड़े भाई साहब, जिसमें अगर आप पढ़ें तो शिक्षा की बात है लेकिन साथ साथ मनोविज्ञान भी है, अद्भुत कहानी है। अगर इससे हम जोड़कर देखें तो मुझे एक कहानी जो बहुत प्रिय है वो गुल्ली डंडा है। इस कहानी में ये है मूल रूप से कि एक आदमी है जो अब किसी कस्बे में रहता था बचपन में, वहां उसका बचपन बीता है और अब वो बाद में उसके पिता का ट्रांसफर हो गया, वो थोड़ा ठीक ठाक समृद्ध घर का था, वो इंजीनियर बन गया और बहुत साल बाद उस अपने कस्बे में लौट गया है। अब वो याद कर रहा है तो उसमें उससे मीठी याद है वो गुल्ली डंडा के खेल की है, और फिर उसके जो रोमांच का वर्णन करते हैं पर गुल्ली डंडा का पूरा जो आनंद होता है, लेकिन साथ साथ एक सामाजिक चेतना अपने आप आती है। और कहा जाता है कि हिंदी में ऐसी कहानियों की कमी है जिनमें खेल का, विज्ञान का, ऐसे विषय जो है प्रेक्षकत कम आते हैं। तो ऐसी ही अगर आप प्रेमचंद की कहानी शतरंज के खिलाड़ी, आप जो कि बड़ी काफी प्रसिद्ध कहानी है, पर उसमें जो आप याद करें कि भारतीय ढंग के शतरंज में प्यादे किस तरह चलते हैं और विलायती शतरंज में कैसे चलते हैं, इसको वो कहानी की विकास में और कहानी के मर्म के बयान में इस्तेमाल करते हैं। तो कहने का अर्थ ये कि सिर्फ शतरंज का ही नाम नहीं रख दिया है। ऐसी एक कहानी जो मुझे याद आती है इसमें बाल मनोविज्ञान की अगर बात करें तो रामलीला कहानी। रामलीला कहानी हमारे आज के समय में मुझे लगता है बहुत ही सार्थक और प्रासंगिक है। अब इस कहानी में क्या है कि रामलीला हो रही, अच्छा शुरुआत इससे होती है कि वो आदमी जो कहानी लिख रहा है वो फिर वही मामला है कि वो बूढ़ा हो चला है और लिखते हैं कि अब जब मैं लोगों को ठोटे लगाकर और हु करते दौड़ता हूं तो कई बार हंसी आती है, पर बचपन में लगता था कि उसका जादू था, उसका रोमांच था। और फिर लिखते हैं कि मेरे बगल वाले घर में ही वो मेकअप हुआ करता था और जिसमें वो सीता का मेकअप और तमाम देवियों का मेकअप और उन पर बुंदियां चिपकाना और रज पीस करके लगाना उनके ऊपर जो पाउडर, और मैं बहुत उत्साहित रहता था। और जब राम सीता लक्ष्मण का रथ निकलता था तो राम के पीछे खड़े होते थे और लिखते हैं कि मुझे ये लगता था कि जो आनंद उसमें आता था।

0: वो लॉर्ड साहब के चैम्बर में बैठकर भी नहीं आए। मतलब लॉर्ड साहब उस जमाने में जो ब्रिटिश टाइम था, हम जानते हैं कि प्रेमचंद चले गए 8 अक्टूबर 1936 को। यहाँ तक तो कहानी बच्चे की है, लेकिन उसके बाद कहानी आगे बढ़ती है कि रामलीला का मंचन हो चुका है लगभग, और अब स्थिति यह है कि उसमें चर्चा चल रही है कि जो कराने वाले लोग हैं, जो कमेटी है, जो जमींदार साहब हैं, कि चढ़ावा कम आया है, तो मतलब ये कि जो मुनाफा होता था, जो कमाई होती थी रामलीला के जरिए, उतनी हो नहीं पाई, तो उसकी भरपाई कैसे की जाए। तो भरपाई के लिए अंत में ये होता है कि कोई नाचने वाली एक महिला है, उनको बुलाया जाता है और फिर उनको ये काम दिया जाता है कि अपनी अदाओं से आप लोगों से कुछ पैसे निकलवाइए, और वो निकलवाती हैं। और उसमें होता ये है कि बालक जो कहानी कह रहा है, इस बालक के पिता पुलिस में हैं और बड़े कड़क आदमी हैं, तो इससे भी वो मांगती हैं कुछ पैसे दीजिए इस तरह का, तो लोग कहते हैं कि इससे तुम्हारी दाल नहीं गलेगी, तो वो बड़े गुस्से से देखते हैं और निकाल के अशर्फ भी दे देते हैं। इनको बड़ी शर्म भी आती है कि मेरे पिताजी जो है वो यहाँ आकर के इस तरह पैसे दे रहे हैं। अगले दिन स्थिति ये होती है कि राम, सीता और लक्ष्मण रो रहे हैं, मतलब वो बच्चे रो रहे हैं जो उनका अभिनय करते थे, और राम का अभिनय करने वाला जो बच्चा है वो उनको समझा रहा है, तो बताते हैं कि इस बार जमींदार साहब ने कुछ दिया नहीं, कहा कि बहुत कम आमदनी हुई है, आगे कभी ले जाना, रास्ते के लिए भी कुछ नहीं दिया है, तो हम लोग क्या करें, कैसे जाएं सोच रहे हैं। तो ये पिताजी से पैसे मांगने जाता है कि आप 2 रुपए दे दीजिए तो उन लोगों को दे दूं, तो वो नहीं देते। अब यहाँ बाल मनोविज्ञान का एक रूप देखिए। उस दिन से मुझे अपने पिता से ऐसी चिढ़ हो गई कि जीवन में उनके किसी सीख को फिर मैंने माना ही नहीं। इससे मेरा नुकसान भी हुआ, लेकिन मेरे अंदर ऐसी एक जुगुप्सा पैदा हुई कि आप उस नाचने वाली को अशर्फी देने को तैयार थे, लेकिन इन बच्चों को आप नहीं दे सके। और फिर वो कहते हैं कि मैं कहीं से, मुझे 2 आने कहीं पड़े थे या मिल गए, और वो जाकर माँ से मांग के या कहीं से 2 आने दिए। यानी एक कहानी का वो एक सिरा उठाते हैं और उस सिरे से वो उसे कहाँ तक ले जाते हैं। कई कहानियां और दिमाग में घूमने लगी। प्रेरणा कहानी याद आ रही है, एक बच्चे की कहानी जिसको अपने शिक्षक से प्रेरणा मिली। ये सही है कि ज्यादा चर्चा के केंद्र में वही कहानियां रहती हैं जो बहुत चर्चित हैं और होनी भी चाहिए। मतलब यहाँ पर मैं इस पर कोई प्रश्नचिन्ह नहीं लगा रहा हूँ।
1: तो जहाँ आप होनी भी चाहिए, जहाँ आप कह रहे हैं, वहाँ एक सवाल मन में आता है कि क्या जिन रचनाओं को हमने मान लिया है कि जो बहुत चर्चित हैं, बहु पठित हैं, उनमें और जो दूसरी और रचनाएं जिनका भी आप जिक्र भी कर रहे थे उदाहरण सहित, तो क्या उनमें अपने कथ में, अपने प्रभाव में या उनकी अपनी शैली में, रचने की शैली में कुछ मूल अंतर है?
0: नहीं, अंतर नहीं है, विस्तार है। मुख्य बात यह है कि प्रेमचंद का एक तो विकास हुआ लगातार। प्रेमचंद ने बिल्कुल सामान्य किस्सा गोई से शुरू किया और वो निखरते चले गए। प्रेमचंद जो है, उनकी जो आखिरी दौर की कहानियां हैं, कफन है या पूस की रात है, ये उनकी सबसे महान कहानियां मानी जाती हैं। उनका अंतिम पूरा जो उपन्यास है वो गोदान है, जो उनका महानतम उपन्यास माना जाता है। और सच्चाई ये है कि उनका वैचारिक विकास भी हुआ, वो एक किस्सा गोई से आगे बढ़े, अपने समय से प्रभावित थे, आदर्शवादी चेतना के साथ आगे बढ़े, हृदय परिवर्तन बहुत होता था उनकी कहानियों में। लेकिन ये है कि प्रेमचंद के यहाँ हमें क्या मिलता है, आपने पूछा, वो ये मिलता है कि जब आप कुछ कहानियों पर ही केंद्रित रहते हैं तो आपको एक वानगी मिलती है उनकी कहानी कला की, उनके सरोकारों की। जब और कहानियां पढ़ते हैं तो आप पाते हैं कि जीवन के इतने सारे तमाम पक्ष और हैं। प्रेमचंद उतने तक ही नहीं थे, वो सामाजिक यथार्थवाद की चेतना, सामाजिक प्रतिरोध की चेतना, बदलाव की चेतना, आजादी की लड़ाई का हिस्सा, मजदूरों किसानों के हकों के लिए लड़ने वाले। तो वो आप देखिए कितनी चीजें हैं जो आपको लगता है कि बिल्कुल आपके आसपास घट रही हैं। इसको देखने के लिए आपको पढ़ना चाहिए कि कितने तरह से जीवन को उन्होंने देखा, इस पर विचार किया। प्रेमचंद ने कहा है कि सच्चा साहित्यकार स्वभावतः प्रगतिशील होता है और साहित्य जो है राजनीति के आगे चलने वाली मशाल है, उनके वाक्य हैं। लेकिन ये है कि मनुष्य से और सृष्टि से बहुत गहरा और आत्मीय प्रेम किए बिना आप साहित्यकार नहीं हो सकते, कलाकार नहीं हो सकते, अच्छे मनुष्य नहीं हो सकते। और प्रेमचंद के यहाँ उनकी कहानी कला में कितने व्यापक स्तर पर, कितनी सूक्ष्मताओं के साथ हमारा संसार, हमारा जीवन मिलता है, जो तब था और जो आज 9 दशक बाद भी प्रेमचंद हमारे पुरोधा हैं और हमारी उंगली पकड़कर हमें ले चल रहे हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने इतने विस्तार में प्रेमचंद की कहानियों के बारे में हमारे श्रोताओं को अवगत कराया आपने।
2: ये भी प्रेमचंद, अभी आप इस विषय पर वरिष्ठ प्रसारण कर्मी, लेखक और आलोचक श्री राजीव कुमार शुक्ल से बातचीत सुन रहे थे। आपसे बातचीत कर रही थी युवा लेखिका नवोदिता मिश्रा। साथियों, प्रेमचंद का युग यकीनन वैसा ही रहा होगा जैसा उनकी कृतियों में है, पर देश को आजादी मिलते ही सब कुछ न सही पर बहुत कुछ बदला। राष्ट्रीय धारा के कवियों की चेतना प्रस्फुटित हुई। अतीत और तत्काल के महासंगम की ज्वाला ने देशभक्ति, एकता और अखंडता के नए सूत्र रचे। आइए उस धारा के महत्वपूर्ण कवि रामधारी सिंह दिनकर की राष्ट्रभक्ति

0: शक्ति और शक्ति पर एक वार्ता सुनते हैं दिनकर राष्ट्र के हितकर। वार्ताकार हैं वरिष्ठ लेखक स्तंभकार और प्राध्यापक डॉक्टर अवनिजेश अवस्थी।
1: भारत के स्वाधीनता संग्राम में जो भारत के और भारतीय भाषाओं के विशेष रूप से हिंदी के कवियों ने जो योगदान दिया उसमें एक लंबी चौड़ी सूची है। माखनलाल चतुर्वेदी हैं, सोहनलाल द्विवेदी हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान है और इसमें एक नाम है राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर का। रामधारी सिंह दिनकर न सिर्फ राष्ट्रीय भावना के कवि हैं बल्कि उनकी वाणी में और उनकी लेखनी में जो ओज था वो अद्भुत ओज था और मंचों पर जिस तरीके से वो कविता का गायन किया करते थे उसमें मुझे लगता है कि शायद सचमुच लोगों की भुजाएं फड़कने लगती होंगी।
2: सुख से नहीं विवश उड़ने के पंख नहीं होने से और मूक इसलिए कि उनके कंठ नहीं खुलते हैं। सोचा है यह कभी कि गूंगापन कैसी पीड़ा है भीतर भीतर दर्द भोगना लेकिन बता न पाना उसे किसी से कहकर मेरे मन को चोट लगी है। बोल नहीं सकता जो उसका भी दुख कोई दुख है कितने लोग समझते हैं आशा उदास आंखों की।
1: आप लोगों को हैरत होगी कि रामधारी सिंह दिनकर 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल जो बारदोली में किसान आंदोलन कर रहे थे उसके संदर्भ में उस समय जब विजय संदेश रामधारी सिंह दिनकर कविता लिखते हैं तो उस कविता को पढ़ करके आज भी भुजाएं फड़कने लगती हैं और वो दृश्य सामने आ जाता है कि जब सरदार पटेल ने बारदोली के किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था और उसमें ब्रिटिश सरकार को पराजय का मुंह देखना पड़ा था। मैं आपको उनकी चार लाइनें सुना सकता हूं और अद्भुत आपको आनंद आएगा उस कविता को सुनने में। तेग तोप तलवार उधर थी इधर निरीहों की थी आह उधर मिटा देने की धुन थी इधर प्रबल मिटने की चाह इधर उठी हुंकार सृष्टि सारी वह डावा डोल हुई प्रलय कारणी ध्वनि जनसत्ता की अतिशय अनमोल हुई ठोक ताल दुंदुभी बजा शासन की हस्त हिलाई है वीर बार डोली वालों की गाओ विजय बधाई है। निरे निहत्थे हैं पर क्यों डर जाएं तेरी फटकारों से गगन गूंज जाएगा भीषण सहस हुंकारों से दमन जेल से डरे कौन पाशवी शक्ति में क्यों भूला भारतीय बच्चे झूलेंगे फांसी का प्यारा झूला बलिवेदी पर चढ़कर जग में अनुपम कीर्ति कमाई है वीर बारदोली वालों की गाओ विजय बधाई है। और एक कविता नहीं उनकी लंबी कविताओं की ऐसी सूची है जो बार बार जहां पर वो इस तरीके की बात करते हैं और जिस तरीके से फांसी के फंदों पर झूल जाने वाले हमारे क्रांतिकारी थे शहीद थे उनके लिए ये कविताएं एक ऐसा संजीवनी का काम करती थीं कि उन कवियों की कविताएं पढ़ करके लोग भारत के स्वाधीनता आंदोलन में कूद पड़ते थे। रामधारी सिंह दिनकर ने रश्मिरथी जैसी काव्य कृति लिखी और न सिर्फ राष्ट्र के स्तर पर वो जिस तरीके से समाज में भी बात करते हैं जाति जाति रटते केवल जिनकी पूंजी पाखंड मैं क्या जानू जाति जाति हैं ये मेरे भुजदंड। एक कविता और मैं आपको सुनाना चाहूंगा 1945 में ये कविता लिख रहे हैं। हा भारत की लाल भवानी जवा कुसुम के हारों वाली शिवा रक्त रोहिणी वसना कबरी में लाल सितारों वाली कर में लिए त्रिशूल कमंडल दिव्य शोभिनी सुरसरी स्नाता राजनीति की अचल स्वामिनी साम्य धर्म ध्वज धर की माता भारत भूमि के मिट्टी से श्रृंगार सजाने वाली चढ़ हिमाद्री पर विश्व शांति का शंख बजाने वाली। 1945 के आसपास ना एक बहुत बड़ा ये चल रहा था कि राष्ट्रीयता क्या होती है और राष्ट्रीयता कहीं अंतर्राष्ट्रीयता में बाधित तो नहीं होती इसलिए रामधारी सिंह दिनकर भारत भूमि पर भारत के स्वाधीनता आंदोलन की आवाज बुलंद करने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को उस देश के रूप में स्थापित करते हैं जो विश्व शांति की बात करता है। जिस समय भारत परतंत्र था उस समय ये बात कहना बड़ा मुश्किल था लेकिन दिनकर जी ने बात कही। जयप्रकाश नारायण रामधारी सिंह दिनकर जी से बहुत अधिक प्रभावित थे। उस समय उनकी कविता बड़ी प्रसिद्ध हुई सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। दिनकर जी ने कुछ साम्यवादी स्वभाव की भी कविताएं लिखी और गांधी जी पर भी कविताएं लिखी उन्होंने लेकिन खुद उन्होंने कहा ये कि मैं जीवन भर गांधी और मार्क्स के बीच में झटके खाता रहा हूं इसीलिए उजले को लाल से गुणा करने पर जो रंग बनता है वही रंग मेरी कविता का रंग है वही रंग केसरिया रंग वो रंग उन्होंने कहा और स्वयं ये किसी आलोचक ने नहीं कहा किसी दिनकर जी के पाठक ने नहीं कहा स्वयं दिनकर जी स्वीकार करते हैं। 1965 के युद्ध के समय सैन्य शिविरों में वो कविताएं गाई जाती थी और दिनकर की अन्य अन्य कविताएं जो हैं सैनिकों के लिए शिविरों में वहां के आम आदमी जो थे जब गांवों से सेनाएं निकलती थी तो दिनकर जी की कविताएं गा गा करके सैनिकों का उत्साह बढ़ाया जाता था। बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जिनको रश्मिरथी पूरी याद है परशुराम की प्रतीक्षा से वो उद्धृत करते हैं क्षमा क्षोभती उसी भुजंग को जिसके पास गरल हो यह कविता की लाइन ऐसी है जो आम तौर पर तब से पिछले 50, 60, 70, 80

0: वर्षों से लेकर के आज तक जो है लगातार उद्धृत की जाती है, मुहावरा बन गई है, अपनी बात को कहने का अंदाज बन गया है। दिनकर जी की कविताएं जो है, शानों को मिलता दूध दही, भूखे बच्चे अकुलाते हैं, ये कविता की पंक्तियां ऐसी हैं जो आम आदमी के मुंह पर, आम आदमी की जुबान पर आती हैं। अपनी बात को कहने के लिए दिनकर जी की पंक्तियों का उदाहरण देकर के जिस तरीके से अपनी बात को यहां पर पुष्ट किया जाता है या स्पष्ट किया जाता है, ये वास्तव में कवि दिनकर की वो सार्थकता है या वो उनकी सफलता है जो शायद हर कवि को नहीं मिलती। दिनकर जी की बहुत प्रसिद्ध कृति है उर्वशी, अपने समय का सूर्य हूं मैं। जब दिनकर जी इस तरीके की पंक्ति पढ़ा करते थे तो समूचा मंच जो है अनगिनत तालियों से भरा रहता था। एक लंबी उनका काव्य नाटक जिसमें चंद्रगुप्त के बारे में है, सेल्यूकस का उदाहरण देते हैं वो कि सेल्यूकस आपने आकर के हमें बहुत अच्छा किया कि हमें अपने आत्मगौरव का भान करा दिया। वो लिखते हैं, भारत भूमि है एक, हिमालय से आसे तो निरंतर, पश्चिम में कंबोज कपिश तक उसकी ही सीमा है, किया कौन अपराध गए जो हम अपनी सीमा तक, अनाहूत हमसे लड़ने को क्यों सेल्यूकस चढ़ आया, मदोन्नमत यूनान जानता था न मगध के बल को, समझा था वह हमें छिन्न शायद पुर के कैसा, वह कलंक का पंख आज धुल गया देश के मुख से, हम कृतज्ञ हैं सेल्यूकस ने अवसर हमें दिया है। दिखा दिया पूरे विश्व को भारत की उस आत्मगौरव का व्यक्त करने का अवसर दिया सेल्यूकस ने। वीर सिकंदर के गौरव का प्रतिभू सेल्यूकस था, आज खड़ा है वह विपन्न आहत सा मगध सभा में, उस बलिष्ठ शार्दूल सदृश निष्प्रभ हत तेज अकिंचन, पर्वत से टकराकर जिसने नखरद तोड़ लिए हों, उस भुजंग सा जिसकी मणिमस्तक से निकल गई हो। तो ये है रामधारी सिंह दिनकर।
1: दिनकर राष्ट्र के हितकर। अभी आप ये वार्ता सुन रहे थे वरिष्ठ लेखक, स्तंभकार और प्राध्यापक डॉक्टर अवनिजेश अवस्थी की इस वार्ता के साथ ही हम अमित घोष, उमा शंकर जोशी, अजीत कुमार, महाश्वेता देवी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, गोपाल दास नीरज, कुंवर बेचैन, कन्हैया लाल नंदन की स्मृति को नमन करते हुए आपसे यहीं विदा लेते हैं। वाचन स्वर नीलम मलकानिया, प्रस्तुति सहयोग वंदना, आलेख और प्रस्तुति राम अवतार पैरवा।

0: ये आकाशवाणी है। संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज रात प्रस्तुत है ख्याल गायन। कलाकार हैं पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय। किराना घराना के दिग्गज कलाकार उस्ताद अब्दुल करीम खां और उस्ताद वाहिद खां का हाथ थामकर जिस सांगीतिक विरासत की शुरुआत हुई थी उसने युगों का सफर तय किया और आज इसे आगे बढ़ाने वाले गुणी कलाकारों में पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय का नाम बड़े अदब से लिया जाता है। कोलकाता के निकट स्थित उपनगर बोशीरहाट में जन्मे और संगीत के माहौल में पले बढ़े पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय ने अपने पिता संगीताचार्य श्री अरुण कुमार चट्टोपाध्याय से महज 5 वर्ष की आयु में संगीत सीखना आरंभ किया। आगे चलकर आपने पंडित ए कानन, विदुषी मालविका कानन और उस्ताद मशकूर अली खान जैसे प्रख्यात कलाकारों से शास्त्रीय संगीत का प्रशिक्षण प्राप्त किया। पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय ने बड़ी ही छोटी उम्र में मंच पर कदम रखा। केवल 7 वर्ष की आयु में सन 1979 में कोलकाता में आयोजित सुरेश संगीत सम्मेलन में उस्ताद अमजद अली खान के साथ आपको कार्यक्रम प्रस्तुत करने का सुयोग प्राप्त हुआ। आकाशवाणी और दूरदर्शन के टॉप ग्रेड के कलाकार होने के साथ साथ आप संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के तहत ICCR के सूचीबद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतज्ञ भी हैं। आज की पीढ़ी के सुविख्यात ख्याल गायकों की श्रेणी में आपका नाम शामिल है। किराना घराना की पारंपरिक पहचान को अक्षुण्ण रखते हुए पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय अपने ख्याल और ठुमरी की प्रस्तुतियों में अद्भुत सुंदर गायकी का मिश्रण करते हैं जो आपकी पेशकश को रंगदार और लोकप्रिय बनाता है।
1: Tonight in the National Program of Music, we present Khayal Recital by Pandit Arnob Chattopadhyay, the musical heritage initiated by Ustad Abdul Karim Khan and Ustad Abdul Wahid Khan. The doyens of Kirana Gharana has meandered through the ages and is still survived by a few vocalists such as Pandit Arnob Chattopadhyay, born and groomed.

0: गायन के अंतर्गत आप पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय से राग यमन सुन रहे थे। आपकी अगली प्रस्तुति है राग हमीर। यह बंदिश पहले मध्य लय तीन ताल, तत्पश्चात द्रुत एक ताल में आबद्ध है।
1: यू वर लिसनिंग टू राग यमन इन द ख्याल रिसाइटल बाय पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय। ही नाउ प्रेजेंट्स राग हमीर, the composition of which is set to Madhyalaya Teen Tal, followed by Drut Ek Tal.

0: पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय से राग हमीर सुन रहे थे। खयाल गायन की इस प्रस्तुति का समापन आप राग वाचस्पति के साथ करेंगे। यह बंदिश मध्य लय तीन ताल और द्रुत तीन ताल में आबद्ध है।
1: यू वर लिसनिंग टू राग हमीर। पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय कंक्लूड्स हिज खयाल रिसाइटल विद राग वाचस्पति। The composition of the rag is set in Madhyalaya Teen Taal and Drut Teen Taal.

0: के इस कार्यक्रम में आप पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय से राग वाचस्पति सुन रहे थे। आपके साथ संगत कर रहे थे तबले पर इमोन सरकार, हारमोनियम पर कमलाक्ष मुखोपाध्याय और तानपुरा पर कोयल शाह। और इसी के साथ आज रात संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है।
1: यू आर लिसनिंग टू राग वाचस्पति इन द ख्याल रिसाइटल बाय पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय। ही वॉज अकम्पनीड ऑन द तबला बाय इमोन सरकार, ऑन द हारमोनियम बाय कमलाक्ष मुखोपाध्याय एंड ऑन द तानपुरा बाय कोयल साहा। एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ National Program of Music Tonight. This program was recorded at the studios of Akashvani, Kolkata.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। गुजरात के सानंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
1: आज का ये कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि सानंद संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी। श्री मोदी ने कहा कि ये विकास भारत की जबरदस्त इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।
1: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
0: इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस वर्ष देश के अंत तक भारत में 5 सेमीकंडक्टर संयंत्र चालू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये संयंत्र केवल 27 महीने में तैयार हो गया। इससे पहले राजस्थान के पचपदरा में प्रधानमंत्री ने 1,05,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखी। उन्होंने पचपदरा में देश के सबसे आधुनिक ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल राष्ट्र को समर्पित किया। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी तेल, गैस या खनिजों के लिए एक औद्योगिक प्रसंस्करण संयंत्र है। इसे अविकसित स्वच्छ भूमि पर बिल्कुल नए सिरे से

मनाया जाता है। श्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में लगभग 54,000 नव नियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोगो सुबियंतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रोबोगो सुबियंतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्रालय ने मादक पदार्थों की मांग में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की है। ये एक व्यापक ढांचा है जिसका उद्देश्य रोकथाम, जागरूकता पैदा करना, क्षमता निर्माण, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा कि इन पहलों का उद्देश्य जागरूकता, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण के माध्यम से मादक

0: का निर्माण, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा कि इन पहलों का उद्देश्य जागरूकता, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण के माध्यम से मादक पदार्थों के दुरुपयोग को रोकना है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला सैयद अली खामनेई के 6 दिन का राष्ट्रव्यापी अंतिम संस्कार आज सुबह तेहरान में शुरू हुआ। ईरान के दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हजारों शोक संतप्त लोग एकत्रित हुए। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 4 विकेट से हरा दिया है। वैभव सूर्यवंशी 15 वर्ष 99 दिन की उम्र में भारत के लिए डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। 5 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आपण माने कार्यक्रम सुनुछन्ते आकाशवाणी कटक केन्द्ररु।
2: राति 11:05 मुख्य संवाद सह महेन्द्र कुमार माझी। आसंता 20 तारीखर संसदर मौसुमी अधिवेशन अगस्त मास 13 तारीख पर्यंत हे अधिवेशन चलिबा नै संसदीय व्यापार मंत्रीक सूचना। सरकारक सह आलोचना परे डाक्टर आंदोलन स्थगित, डाक्टरमाने आजठारु कार्यरे जोगदेब नै निष्पत्ति। पूरी श्रीमंदिर गर्भगृह वैषयिक जांच आसंता 18 तारीख अनुष्ठित होने श्रीमंदिर प्रशासन निष्पत्ति। राज्य विभिन्न स्थान में वन महोत्सव सप्ताह पालन अवसर में चारारोपण कार्यक्रम जारी। 2025-26 रबी ऋतु में धान संग्रह लक्ष्य पूर्ण होइछि कहले समवाय मंत्री प्रदीप बलसामंत। राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी निर्देश क्रमे आसंताकाली स्वतंत्र सघन संशोधन 2026 उपलक्षे प्रकाश पाइब चिठा भोटर तालिका। राज्यर विभिन्न स्थान में आसंता 2 दिन पर्यंत प्रबल वर्षा नहीं पाणीपाग विभाग सूचना। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज गुजरात सानंद 7,500 कोटी टंका विनियोग सेमिकंडक्टर ओसाट सुविधा उद्घाटन कर राजस्थान गस्त अवसर में 1,00,000 कोटी टंका ऊर्ध्व व्यय विभिन्न प्रकल्प उद्घाटन और शिलान्यास कले प्रधानमंत्री। पश्चिम एशिया देखादेव संकट सत्वे देश चलित शताब्दी अतिक्रम कर बृहत शक्ति संकट कहले प्रधानमंत्री। अहमदाबाद मुंबई हाईस्पीड रेल करिडर 2029 सुधा संपूर्ण होगा नहीं घोषणा कले रेलमंत्री। वैदेशिक व्यापार मंत्री डॉ. एस जयशंकर आसंताकाली 10 तारीख जाए कतार, बाहरीन, क्वेत और ओमान गस्तर जिबे। एवं द्वितीय T20 आंतर्जातिक क्रिकेट मैच में इंग्लैंड 4 विकेट विजयी। भारत प्रथम बैटिंग करी निर्धारित 20 ओवर 7 विकेट हराई 190 रन संग्रह पिछा करी इंग्लैंड दल 19 ओवर 6 विकेट हराई 191 रन संग्रह करी विजयी होईछि। मुख्य संवाद आज पे यतिकी। नमस्कार।

यज्ञ वराह हिरण्याक्ष को संहार करे देवता मानकर संकट दूर करने को कहते हिरण्याक्ष कोप कर प्रभु को गदा प्रहार कला माया बल से सही ने से युद्ध भयंकर रूप धारण कला शेषे प्रबल वायु प्रवाह वृक्ष जपरी भूईरे उपुड़ी पड़े सेपरी घोर रड़ी छाड़ी हिरण्याक्ष प्राण छाड़ा।

नमो नमः। दारू देवता कोटि ओडियांका आराध्य प्रभु जगन्नाथ बड़ भाई बलभद्र देवी सुभद्रा और सुदर्शन चतुर्धा मूर्ति एवं चली अनवसर अणसर बेल एवं श्रीजीव को भक्तों दर्शन मना स्नान पूर्णिमें 108 गरा शीतल जल स्नान श्रीजी एवं

0: यहाँ खबरें तोड़ी मरोड़ी नहीं जाती।
1: बहुत सारे निजी चैनल और निजी चैनलों के बोलबाला में हम समझ रहे हैं कि आकाशवाणी और दूरदर्शन इसकी रिलेवेंसी क्या है।
0: यहाँ होती है सीधी, सटीक और सच्ची खबरें।
1: मैं मन से मानता हूँ कि भारत के भाव की अभिव्यक्ति केवल और केवल आकाशवाणी और दूरदर्शन ही कर रहे,
0: क्योंकि ये है देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल। डीडी न्यूज, केवल खबर, पूरी खबर।

0: ଠିକ ସମୟରେ ବୁଣନ୍ତୁ ଆଉ ପ୍ରଚୁର ଅମଳର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ପାଆନ୍ତୁ।
1: ଚାଷ ବିଷୟରେ ଚାଷୀ ଠାରୁ ଭଲ କିଏ ଜାଣିଛି? ବିହନ ଠିକ ସମୟରେ ବୁଣା ଯାଇ ସାରିଛି।
2: ମୁଁ ଫସଲ ବିଷୟରେ ନୁହେଁ, ଏନପିଏସ୍ ସଞ୍ଚୟ ବିଷୟରେ କହୁଛି।
1: ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ଏନପିଏସ୍ ସଞ୍ଚୟ କଣ?
2: एनपीएस संचय होउछि भारत सरकारको प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा परिचालित एक पेंशन योजना जेउथिरे मात्र 250 टंकारे खाता खोली टंका जमा करथिले आपणकर वृद्धावस्थारे मासिक पेंशन मिलिबो। आजि ही एनपीएस संचयरे जमा करिबा आरंभ करन्तु आउ निजो भविष्यत सुरक्षित करन्तु। अधिक विवरण पाए निकटस्थ जनसेवा केन्द्र किंबा निजो बैंक सहित जोगाजोग करन्तु। एनपीएस संचय सहित भविष्यत पाए प्रस्तुत रहन्तु।
3: गर्भावस्था प्रत्येक महिला निजर एचआईवी परीक्षा करेने अजना आतंक दूरे रुहन्तु।
4: जदि रिपोर्ट पॉजिटिव आसे ताले उपयुक्त चिकित्सा जरिया निजे तथा शिशु उभय एड्स भली मारात्मक रोग को प्रतिरोध करन्तु।
3: मनि रखन्तु एई परीक्षा एवं चिकित्सा निकटस्थ सरकारी डाक्टरखाना रे थिबा आईसीटीसी केन्द्र रे मागणा रे उपलब्ध।
4: अधिक जानिबा पई टोल फ्री नंबर 1097 सह जोगाजोग करन्तु।
3: ओडिसा राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित रे जारी।

श्रोतामध्ये सुनून एक घोषणा. चुक्तिभित्तिक सामयिक संवाददाता आवेदन निमन्ते आकाशवाणी कटक संवाद विभाग पक्षरु अनुगुल, बालेश्वर, जगतसिंहपुर, मयूरभंज एवं गजपति जिल्लापै चुक्तिभित्तिरे सामयिक संवाददाता निजुक्तिपै दरखास्त आह्वान कराजाउछि. आवेदनर शेष तारीख 7/7/2026. प्रार्थीकर वयस 24 वर्षरु 50 वर्ष मध्यरे होइथिबा आवश्यक. सविशेष विवरणी पई www.newsonair.gov.in देखिबा को अनुरोध. घोषणाटी एतिकिरे शेष हेला.

0: नीलं भुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महाशायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। हे करुणासागर प्रभु श्रीराम, तुमर नवदुर्पादल कमनीय रूपकांति मोर सर्वदा ध्येय हेउ। श्रीचरणरे प्रणाम प्रभु।
1: उपेन्द्र, उपेन्द्र
0: बाबा,
1: मु जहां सुनली ताहा कण सत्य?
0: किसी तो अपराध करनी पिता।
1: भंजवंशर इष्ट देव दुर्गा तांकु पासरी तु पुणि रामचंद्र को आराधना करुचु?
0: प्रभु रामचंद्र ही मते कवि करिछंती बाबा, तांकरी तारक मंत्र जप करिबा परे ही मोर कवित्व।
1: बंद कर, निर्बोधतार गोटे सीमा अछि उपेन्द्र। तुम्हें राजपुत्र, राजनीति तुम जीविका, साहित्य वृथा समय नष्ट करी निजर वंशगत विद्यार सिद्ध को धनंजय भंजंकर चक्रांत को पंड करिबा पाई आज तुमको असी उत्तोलन करिबाकु पड़िबो।
0: पितामहंक विरुद्ध रे? ना बाबा ना, मते क्षमा करंतु, एक कथा मु पारिबि नाही।
1: पारिबु नाही, माने रख उपेन्द्र, राजनीति आ कूटनीति सबल र संबल, किंतु साहित्य दुर्बल र अवलंबन।
0: से दुर्बलता ही मोर गर्व, मु सही साहित्य र आश्रय नेबाकु चाहे। लोड़ा नाही ए राजप्रसाद, ए विभव, ए ऐश्वर्य, कविता ही मोर अवलंबन, कविता ही मोर जीवन।
1: कविता सेटा गोटे ख्या
0: ना, से एक स्वर्गीय अनुभूति, एक दिव्य दर्शन।
1: कविता रचना करिबा गोटे क्षणिक उत्तेजना, गोटे सामयिक उन्मादना। राजनीति भली एथिरे चिंता शक्तिर विकास पाई क्षेत्र नाही। कविता सहित कल्पनार संपर्क प्रतिष्ठा करि जो माने निजकु कल्पना विलासी बोली परिचय दियंती से माने प्रतारक मूर्ख।
2: चमत्कार कल्पना विलासी कवि उपेन्द्र उद्देश्य रे ए सम्मान सूचक वाणी धनंजय भंजर सुजोग संतान नीलकंठ कंठरे सेना संभव अन्य का कंठरे एक शोभा पाइब बोली मोर कहीं विश्वास है।
1: पिता
2: नीलकंठ, एपरी कथा तुम ठारू आशा करा जाए ना। कविर संतान तुम्हें, कविर तुम्हें जनक, कवि सुलभ सरलता और कमनीयता तुमठी नाही।
1: कविर संतान, कविर जनक, ए परिचय को घृणा करे।
2: नीलकंठ
1: वीर का पुरुष क्लीप आउ पंगुर श्रद्धा नाम कवि, ए कथा निर्बोध उपेन्द्र सिन्हा बुझी पारे ना, किंतु नीलकंठ से भ्रम हबनि।
2: तुम्हें तो नहीं हो नीलकंठ, तुमर औद्धत्य शास्ति दरकार। जाओ उपेन्द्र सहित निवृत्त में साहित्य आलोचना करने को चाहे।
1: ये सब कौन हो ची बाबा, मो संतान को आप विपद हमें करूँ कहीं उद्देश्य रखी आज आप मोठ दूरे नौ
2: बंधन करिबार शक्ति न थाई प्रभुत्व।

0: ए कोन हैला कथा कोन अरे कोन हैला
1: कोन हबो सब सरी गला
2: आउ कोन किछि अछि सब तो सरी गला
0: अरे कोन टिके मते कह
1: नडा भाई कोन आउ कहिबी साहित्य अवस्था पूरा सरी गला
2: ओ परा तार प्रकृत चर्चा केही कोले नै नंडा भाई
1: गोरांगे तुमे कथा को जम्मा छोट मन करना बुझला नंडा भाई देशरे रसिक माने एकजुट नहले सबु रस सरी जीव मु रसिक चंद्र पंडित आ तपन कुमार गायक आ ये गोरांग चंद्र
3: रसिक भाई नेता अमर कवि उपेन्द्र
1: हाँ
3: आमे तांको गुण चिन्हु आउ से आमो गुण चिन्हन्ते
1: अवश्य अवश्य सेति पई आमो परि पंडित कु लक्ष्य करी तार वैदेहिस विलास रे रहिछि बुद्धि उत्तम जाहर काव्य अभिधाने विजिन नाश चरित्र सुण सावधाने
3: हाँ परा आमरी परि जाहर काव्य अभिधान रे उत्तम बुद्धि सेई केवल उपेन्द्र लेखा भली लेखार रस पूजी पारिबरे रसिक भाई
4: सते जंति काव्य अभिधान रे एकदम माने बृहस्पति आ
1: भाई रे
4: हैं ने कोन कोन अभिधान पढिछु मु टिके सुने
1: नडा भाई
4: हां
1: अरे कोन सुनिबो
4: हां
1: शास्त्र कोन कहूची अमर जुमर निथेई घोष आउ सबु पाठ चाळ रे घोष
3: हां परा हां हां अमर जमर निठेई निठेई घोसी आउ सबु पाठ को चाळ रे खुशी देइतिलु बेली आज परा उपेन्द्र भाव को बुझी पारछु
4: एति पै निजर आउ सु उपेन्द्र रो एत्ते बढेई करूछु नाही उपेन्द्र आउ कविता लेखि नाही त अभिधान लेखिछि अरे साहित्य पाटी मीठा करिवो कोन उल्टे दंत भांगी दउछि
1: नडा भाई अरसि केसु रसस्य निवेदनम शिरसि
3: मालिक मालिक मालिक
4: अति सुंदर
3: बुझिलु बुझिलु रसिक भाई उपेन्द्र ता कविता रे लेखिछि
1: कोन लेखिछि
3: नारी केळ जे रसपुर भक्खि न पारई ए बानर
4: कोन हैला मु बानर नै नै नै मु बानर ओहो मने मन त कामदेव परी सुंदर अरे बुझिलु टोका बस रे जेते बळे मु बाटे रे चली दाउतली कपाट फांकुरु मते खाली बांक चाहणी दउतले माने गोबाख्य बाटे कटाक्ष बुझि परछु ए अरे तू पुनी मते खोलिबु हां अरे जो त चेहरा सेतरे काने रे चंपा फूल बेकरे मल्ली फूल हार रसिक पारण पोको
1: नंडा भाई ए तुमे तो भूल बुझुछ मु कोन तमको कहुसली माने माने चेहरा रे खराब बोली कहली देखा सुंदर कखारु बड़ी होई जे माने रस ग्रहण करि पारंती नाही उपेन्द्र भाषा रे से माने
3: बानर
1: हां हां
3: एकदम एकदम ठीक रसिक भाई बुझिलु अरे बानर जेमिति दांत रे नडिया चोबाई न पारी ताको खराब बोली कहे और रसिक ग्राहक सेई परि साहित्य बुझी न पारी ताको रसहीन बोली कहे आहा कथा लागी कथा खंडेर रसिक भाई
4: हां हां नहीं अ को

0: महाराज
1: तुम्हें एठी काम किलानी
0: घनबंज प्रति आपण अन्याय करछंती महाराज गंगाधर मृत्यु पे ताकु निर्वासित करछु
1: रानी धनंजयर विचार प्रति आक्षेप
0: हां कहबा को बाध्य होछ महाराज आपण ज्योतिषर वाक्य को उपेक्षा करछु
1: महारानी
0: आपण कहते से हेई थांता राजा किंतु आपण ताकु
1: ना ना ज्योतिषर वाणी अनुसार राजनीति चली पारे ना से मोर भ्रातुष्पुत्र राज सिंहासन तार कोनोसी अधिकार नाही रानी
0: ताहले आपण नीलकंठ को जुवराज करंतु आपण को उत्तराधिकारी भाबे से आपण को गौरव अक्षुण्ण
1: रखबे परंपरा अनुसार गंगाधर पुत्र शत्रुंजय हेबो युवराज
0: आपण तबे गोटे अंधनीति अनुसरण करी योग्य व्यक्ति प्रति अविचार करिवे ए आपण को अन्याय घोर अन्याय
1: धोनी हो रानी घुमसर दरबार राजा धनंजय निष्पत्ति विरोध कले तुमको शास्ति दबा को से पश्चात्पद हेबो
0: महाराज
1: सुन महाराणी नीलकंठ सिंहासन पाई अयोग्य राज्य शासन पाई जे व्यक्तित्व दरकार ताठारे नाही
0: तेबे शत्रुंजय को सिंहासन देबे बोली आपण निष्पत्ति कर सारछंती
1: हां गंगाधर पर सिंहासन शत्रुंजय प्राप्य
0: ओ आपण को प्रथम स्त्री रा पुत्र प्रपुत्र को सिंहासन देबे बोली आपण तेबे स्थिर करथिले मु कि नीलकंठ केहि न
1: तुमर ए अभिमान धनंजय को विचलित करि पारिबो नाही राणी धनंजय भंज आज वृद्ध आउ तुमे आसी पहुंची तो जीवन मध्याह्न रूपर आकर्षण तुम आई कर्तव्य प्रति धनंजय भंज एवं बेस सचेतन तुम्हें जाओ तेज जीवा पूर्व शुणी जाओ।

0: ए भूल तुम्हें कहीं कल शत्रुंजय
1: दादा घन दादा को देख मोर मन से दोषी नुहंती
2: प्रमाण तुमको जोगे दिगला अथच तुम सब भंडूर करदे बस
1: लाणीमा
2: जान निर्वाचन पर घन भंज एथरक आहरी हिंसर हो पड़ तार मुक्ति भिक्षा कर तुम किसी भल कल ना शत्रुंजय
1: राणीमा विचार बेले घनभंज ठीक बाबा पर दिशिले
2: ए तुम दुर्बलता शत्रुंजय से घुंसर अमंगल कर पारे
1: बर्तमान से कथा भाविक लाभ ना राणीमा जहाँ
0: अदूरदर्शिता तुम शास्ति दरकार
1: दादा
2: नीलकंठ शत्रुंजय को एपरी कहवाई तोर अधिकार ना तोर बाबा घुमसर सिंहासन तार प्राप्त तु हेबू तार अधीनस्थ प्रजा
1: मुबी राजा आउ दादा हे भी मोर प्रजा एक कल्पन आनी पार ना राणीमा
2: यह तो तुम महाराज इच्छा योग्य व्यक्ति को सम्मान देवा से शिखि ना
3: महाराज आज्ञा कर कुमार
1: आसी राणीमा
2: हो देखु नीलकंठ महाराज अभिचार शत्रुंजय को उत्तराधिकारी करने से एक भीषण षड्यंत्र कर निकट को डाकी ताकु राज्यर समस्त गुप्त कथा कहते
0: ये कथा पर भी तुम विश्वास कर शत्रुंजय को
2: नीलकंठ तो माँ को एपर्त तो चिन्ह पारि अंतर बाहर मध्य तार ढेर तफात तो रही शत्रुंजय को अस्त्र कर घनभंज को शेष करदेवार जो कल्पना करी कार्यरे परिणत हो पारा ना ए त्रुटि लगे शत्रुंजय को कठोर शास्ति देवाई मुझ स्थिर कर नीलकंठ ता पूर्व धीर स्थिर भाव आगे चल
0: आज जाके तो मुझ तुम आदेश पालन कर तुम उपदेश बल प्रत्येक क्षेत्र में जयी
2: एवं तो जयी हबु नीलकंठ तो मंडारिणी नरक को मध्य जाई पारे
0: माँ

सुनेले नाटक भंज कवि सम्राट विभिन्न भूमिकारे थिले उपेन्द्र भंज विनायक मिश्र नीलकंठ सुरेन्द्र महांती धनंजय वैष्णव चरण महापात्र शत्रुंजय कुंज बिहारी नंद घनभंज सरोज कुमार बेहरा रसिक नरेन्द्र कुमार बेहरा गौरांग ब्रज सिंह नंडा सायद अब्दुल दयान मंडाराणी बीणापाणी महांती माधवी नम्रता दास प्रहरी वासुदेव माणिक संगीतांशरे कंठदान कले डॉक्टर सुधा मिश्र रचना कले रजत कुमार कर परिचालना कले रमापद नंद।

0: अजना लिंक क्लिक करंतु नै साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 मने रखंतु एसबीआई सचेतन रहंतु सुरक्षित रहंतु कस्टमर केयर तरफ फोन आसीतिला कहुतिले तमरो 50,000 रिवार्ड पॉइंट्स एक्सपायर हेइ जिवो ए लिंक पर अथि एपीके डाउनलोड करिनियंतु
1: ठीक लागुनी स्कैम भी हेइ पा

0: श्रोता बंधु नमस्कार, स्वागत आपण मानको आजिर डाक्तरंकु पचारि बुझिबा कार्यक्रमको। विगत किछि वर्ष हेब देखा जाउछि जे आम देशरे मधुमेह रोगीक संख्या आशात्यत भाबे वृद्धि पाउछि, जहाँ फळरे कि आम देशको वर्तमान मधुमेह रोगर राजधानी बोली कहुछि। तेबे मनरे प्रश्न उठे जे काहेकि आम देशरे मधुमेह रोगीक संख्या एपरि बढ़िबार लागिछि। मधुमेह रोग सहित खाद्यर कण किछि संपर्क रहिछि? मधुमेह रोगी माने तांक स्वास्थ्यर जत्न किपरि नेबा उचित? तेबे आसन्तु से संपर्करे आलोचना शुणिबा। आलोचना करिछन्ति डाक्टर संबित कुमार सुबुद्धि एवं तांक सहित आलोचनारे अंशग्रहण करिछन्ति लीला महंती। डाक्टर सुबुद्धि, आपणकु आमर आजिर कार्यक्रमकु स्वागत करुछु। नमस्कार।
1: नमस्कार
0: डाक्टर सुबुद्धि, जने व्यक्ति मधुमेह रोग रे आक्रांत होंति काहेकि?
1: मधुमेह रोग जोथरे आमर शरीर रे शर्करार परिमाण बढ़ी जाउछि, ए रोग एथिपई हुए आमर जेतबेले शरीर रे जो अग्नाशय किंबा जो पैनक्रियास अछि सेथरे जेतबेले पूर्ण मात्रा रे इन्सुलिन तयारी न होई परिथाय सेथिपई आमकु मधुमेह हुए।
0: इन्सुलिन नो कार्य आम शरीर रे कोन?
1: इन्सुलिन रो काम हेला आम शरीर रे जो शर्करा अछि सेटा साधारणत परिमात्र बे आम देह रे सुगर किंबा शर्करा रुहे। इन्सुलिन एई जो सुगर को यूज करिके आम बॉडी रे मेटाबॉलिज्म रे हेल्प करे।
0: जने व्यक्ति जदि मधुमेह रोग रे आक्रांत हेथांती तांकठारे कोन सब लक्षण प्रकाश पाए?
1: मधुमेह रोगी रे जो माने पीड़ित होवंती सेमानंगरो ओजन कमी जाए, सेमानंगो चालला बळे धई सई लागे, सेमानंगो पाद रे झिमझिम हुए, सेमानंगो छाती रे पीड़ा हुए, सेमानंगो बारंबार परिश्रा लागे, ସେମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ଭୋକ ଲାଗେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। ଆଉ ଏଇସବୁ ଲକ୍ଷଣ ବାବଦରେ ସେମାନଙ୍କର ବେଳେବେଳେ କୋଷ ଘରେ କିମ୍ବା ପରିସ୍ରା ଘରେ ଇନଫେକ୍ସନ ବି ବହୁତ ସମୟରେ ହେଇଯାଇଥାଏ, ଯୋଉଥିରେ ସେମାନେ ଟେଷ୍ଟ କଲାବେଳୁ ତାଙ୍କୁ ସୁଗାର ବାହାରିଥାଏ।
0: ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧୁମେହ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲେ ତାଙ୍କର ପରିସ୍ରା ଯିବାର ପରିମାଣଟା କାହିଁକି ବଢ଼ିଯାଏ?
1: ଏଇଟାକୁ ସବୁ ଅସ୍ମୋଟିକ୍ ସିମ୍ପଟମ୍ସ କୁହାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଶର୍କରାର ପରିମାଣ ଦେହରେ ବଢ଼ିଯାଏ ତ ବଡିରେ ଆମର ଅସ୍ମୋସିସ୍ ହୁଏ, ଯାହା ସକାଶେ ଆମକୁ ବେଶୀ ଭୋକ ଲାଗେ, ବେଶୀ ଶୋଷ ଲାଗେ ଆଉ ବେଶୀ ପରିସ୍ରା ଲାଗେ।
0: ମଧୁମେହ ରୋଗ କେତେ ପ୍ରକାର ଅଛି?
1: ମଧୁମେହ ରୋଗ ଚାରି ପ୍ରକାର ଅଛି, ଟାଇପ୍ 1, ଟାଇପ୍ 2, ଜେଷ୍ଟେସନାଲ ଯୋଉଟାକି ଟାଇପ୍ 3, ଟାଇପ୍ 4 ଯୋଉଟାକି ଆମର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଡାଇବେଟିସ୍ ଆମେ କହୁଛେ। ଟାଇପ୍ 1 ରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଆମର ଯୋଉ ଅଗ୍ନାଶୟ ଅଛି ସେଥିରୁ ଜନ୍ମରୁ

0: आम परंपरा आम कला संस्कृति आकाशवाणी ही रखिचे साइति।
1: बन्या हेउ बा महाबात्या सबु परिस्थिति रे
2: गारु सहर जाए सबु स्थान रे
1: आबाल वृद्ध बनिता समस्तंक पाई
2: जुआंग ओ सांतालंक ठारु बंडा एवं कोयंक जाए सबुरी भाषा रे
1: केवल आकाशवाणी।

तो कितनी हिंदी कथा चित्र गीता श्रोता बंधु जो मो अच्छे मो सहित पूर्व भाई प्रति गीत व्यवहार कर गोटे शब्द से शब्द को आपने शुणु भरपूर मजा उठाते तेज आउ डे आरंभ करवा हिंदी कथा चित्र गीतर कार्यक्रम असरंती प्रारंभ कार्यक्रम आरंभ गीतटी द्वित कंठ आनुराधा पर्वाल और देवनारायण कथा चित्र आशीर्वाद